0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: It's music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.
0: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station that plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: Hit music.
1: Back to back.
2: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
3: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Get ready to move.
8: It's all about the beat.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और

0: 1046. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: जबरदस्त हिट्स,
5: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।
6: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1.

0: You are listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station that plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: के।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: Commercial time.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
15: Visit us

Welcome back. Very good morning, dear listeners of Radio Faza 97.1 FM. Here is your host, Nasir Khan. Definitely, it's a live show, namely, good morning. जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम. तो जनाब खूबसूरत से ट्रैक्स आपकी स्मार्ट होगी नजर थे, बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में ये ट्रैक्स ही आपको सूट करते थे. बड़ी देर मैंने भी इन ट्रैक्स को एंजॉय किया, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं स्टूडियो में लेट आया हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, ताखीर इंसान से हो जाती है. कुछ रास्ते में पानी था और कुछ रास्ते भी दुश्वार थे. वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालम सन, को सानू मरण का शौक भी सी. जनाब जिनको जिंदा रहने का शौक है वो जिंदगी जीते हैं जनाब, और द्राक के उस पार जब वो सोच के उस पहलू में डूबते हैं जो हमेशा आपकी रूह के डीप डीप डीप यानी गहराई के हिस्से से निकलता है और आपके जिस्म को मतवातर खुशबूदार करता हुआ एक नई दिशा की तरफ लेके चलता है. वो दिशा कौन सी होती है? वो होती है कामयाबी की, वो होती है मोटिवेशन की, वो होती है उन तमाम लोगों की जो लोग आपकी ज़िंदगी में समाए जा चुके होते हैं, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में लेजेंड कहलाते हैं, वो लोग जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप कामयाब हों उनकी तरह. कोई बात नहीं, उम्र क्या है, उम्र इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर. आजकल ना टिकटॉक पे बड़ी फेमस एक रील हुई भी है यार उसमें ना वो बंदा कह रहा होता है कि जनाब चाइना के कोई व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा पुरुष हैं, बल्कि उनकी विशेष टिप्पणी, उनके विचार यार अजीब आदमी है. रियली मैं हैरान होता हूँ. आप भी बिल्कुल स्टडी कीजिएगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि मैं किसकी बात करूँ. जनाब वेगचंद आई थिंक यही उनका नाम है, और ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में मैं अक्सर सोचता था कि यार इंसान को ऐसा होना चाहिए. लेकिन जब मैं खूबसूरत सी बात बताऊँ आपको, खूबसूरत सी बात ये है कि मोटिवेशन जब हमारे पास रहती है उस वक्त तक हम नहीं रहते. ये बड़ा अजीब सा रूल है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी का, लेकिन होना क्या चाहिए? होना ऐसा चाहिए कि जब इंसान मोटिवेट हो और जब इंसान ये सोचे कि यार अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो फिर ये ना देखे कि उसने पीछे खोया क्या है. माजी को याद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इकबाल कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है रब, याद माजी अजाब है या रब, या तू मुझसे छीन ले हाफसा मेरा. गालिबन शायर मशरक का ये शेर है, लेकिन अगर ये किसी और का है तो फिर डेफिनेटली मुझे क्रैक कीजिएगा. आप कैसे करेंगे? 01157109 पे मैसेज करके. आपका मिसबार नासिर खान, गुड मॉर्निंग की खूबसूरत सी गाड़ी, खूबसूरत सी सवारी जनाब, बिल्कुल रवां दवां है अपनी मंजर की तरफ, और जो मुसाफिर इसमें सवार हो चुके हैं डेफिनेटली उन्होंने 97.1 FM को ट्यून किया. लेकिन डैप पे भी आप हमें फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा आपको बताता चलूं कि जो महिलाएं घर में बैठी हैं इस वक्त यानी ड्राइव नहीं कर रही, अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग. लेकिन अगर आप यूज़ भी करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है जनाब? आपने साइड पे कहीं स्टारबक्स या कोस्टा की कोई अच्छी सी ना ब्रांच देख के या सिटी सेंटर से बाहर निकल के अगर आप नॉर्थ साइड पे जाएं या मोटरवे पे चढ़ जाएं, वहाँ पे भी आपको कोई भी टेस्को की ऐसी फ्रेंचाइज मिलेगी, कोई ऐसा पेट्रोल स्टेशन मिलेगा जहाँ पे आपको कोस्टा या स्टारबक्स ओनली टू, तो फिर एक अगर आप कैपेचिनो लाइक करते हैं तो फिर डेफिनेटली इस ज़बरदस्त मौसम में आप इंजॉय कीजिएगा. लेकिन मेरे लिए डबल एस्प्रेसो एक शॉट और उसके साथ आपकी यादें इमेजिनेशन में रखिएगा. मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊँगा. अगर आपने कर लिया तो फिर मुझे बताइएगा कि आपने ऑर्डर कर दिया, तो फिर मैं वही कॉफ़ी अपने स्टूडियो में ऑर्डर कर लूँगा. लेकिन रेडियो फ़ज़ा की जो मैनेजमेंट है बड़ी सख्त है, कहते हैं यार स्टूडियो में कोई चीज़ खाना पीना अलाउ नहीं है, लेकिन आपके लिए करूँगा. लेकिन अगर आप ऑर्डर कर चुके होंगे तो मुझे बताइएगा. कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ ना, 01157109 इस नंबर पर मैसेज कीजिए और शामिल हो जाइए व्हाट्सएप के जरिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन में. और जो लोग शामिल होंगे डेफिनेटली उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद, वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम. तो जनाब गपशप भी हमारी साथ साथ चल रही है, तंज़ो मज़ाक भी है, मोटिवेशन भी रहेगी. नेक्स्ट सेगमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब नाम मैंने लिया ना स्टारबक्स का, तो फिर आप सोच लें कि अगला सेगमेंट मेरा क्या होगा. सोचने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप जिंदा रहें. जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है आप ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, डेफिनेटली आप जिंदा रहेंगे. जो मिसालें होती हैं ना, अक्सर मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान को मिसाल बनना चाहिए, याद नहीं, क्योंकि याद ख़त्म हो जाती है, मिसालें दी जाती हैं. तो मिसाल जब होता है ना, इंसान कहते हैं ना यार, फॉर एग्जांपल मेरा, अच्छा मेरी बड़ी ख्वाहिश है सामीन कि मैं कभी ना ये कह लें आपके
मुझे कोई कहे फॉर एग्जांपल नासिर है, यार कमाल, ये आज तक हम ग्रामर में पढ़ते हैं, ग्रामेटिकली या इंग्लिश में या लिटरेचर में कभी कभी हमने इस चीज़ को पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला ब्ला, यार कब मेरा नाम आएगा, वो सियाने कह के चले गए, लेकिन जब सियाना मैं कहता हूँ तो आप फिर मेरी तरफ देखते हैं, डेफिनेटली मुझे एहसास है इस चीज़ का। तो जनाब ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपके दिलों को लुभाने के लिए थी, आपके माइंड को स्वस्थ करने के लिए थी और आपके विचार को एक नई दिशा देने के लिए। अगर आपके भी विचार मेरे विचार के साथ मिलते हैं, आपकी सोच मेरी स्वाच के साथ मिलती हैं, तो फिर डेफिनेटली शामिल हो जाइए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। अलावा जी आपको बताता चलूं कि हमारी बाकी जितनी ट्रांसमिशन हैं उनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं, उनके बारे में जानने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा radiofaza.co.uk वेबसाइट है जी हमारी। उसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग पर हमें सुनना चाहते हैं तो फिर live.radiofaza.co.uk। उसके अलावा मैं बता रहा था जो महिलाएं घर में हैं वो ऐप मोबाइल पे कैसे डाउनलोड करेंगी, जहाँ डेफिनेटली या एंड्रॉयड होगा या फिर आईफोन होगा 17 प्रो मैक्स। तो फिर जनाब आपने क्या करना है कि आपने उस पर जाके गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे जाके जस्ट लिखेंगे रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल, फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन बेज येलो किसी भी कलर में लिखा फजा आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए गेट कीजिए, जब उसके बाद आप प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नज़र। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

0: तो लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट तो नहीं है लेकिन अनाउंसमेंट है अभी हमारे दरमियान हाई लोनी जारी कमर्शियल ब्रेक उस पर रहेगी आपसे मुलाकात. सो स्टे ट्यून्ड स्टे पॉजिटिव स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 एफएम योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक.
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
1: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
1: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया.
3: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
1: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
3: AMH सॉलिसिटर्स होर कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ए क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
1: चले उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा.
3: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम.
1: जबरदस्त मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिरान आपके साथ और ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद थे द ग्रेट हॉवर्ड शॉल्स और कैसे इन्होंने जबरदस्त तरीके से स्टारबक्स को टेक ओवर किया और एक जो खूबसूरत सी फरमाइश होती है ना ख्वाहिश होती है जहन में कहीं छुपी रहती है कि आप मुसलसल आप काविशें करते रहते हैं और काविशों के बाद आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपकी जो काविशें हैं वो किसी गलत दिशा में थी। आपको इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि आपकी सिमत दुरुस्त सिरात मुस्तकीम यानी आपका जो किबला है वो दुरुस्त होना चाहिए। किबला दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ती है। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि बिजनेस मैनेजमेंट में या जब आप तरक्की करते हैं या आप अपनी डेली बेसिस की लाइफ पे, फॉर एग्जांपल अभी आप किसी जॉब से आ रहे हैं और फिर आपने किसी जॉब पे जाना है, कहीं उन्हें तो आज रेंट पे करना है, कहीं उनकी लाइबिलिटीज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हर इंसान के पास जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ है, उसके कंधे हमेशा झुके रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमेशा हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर पुरुष को एक ऐसी ताकत देता है जिसको आप रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि मुज़ाहमत करना, रोकना उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए इंसान को ऊपर वाले ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा अक्ल की वजह से, और अक्ल ही इंसान के पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में कुरान पाक में भी अक्सर ये चीज़ आती है कि तदब्बुर करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें बिल्कुल तहकीक करनी चाहिए, हर चीज पे तहकीक होनी चाहिए और आपको ये पता हो कि हमने किस सिम्त में अपने जाना है, हमने किसी को मोटिवेट करना है, किसी को साथ लेके चलना है या खुद आपने अकेले उस सिम्त में जाना है ताकि कामयाबी आपके कदम चूम सके झक मार के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सॉरी टू से आपकी जो मेहनत है वो खोते वाली होगी, क्योंकि जो खोता है, जो सोता है वो खोता है। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि ज़्यादा सोयल रहने वाले जो लोग होते हैं बेसिकली वो थोड़ा सा देर से समझते हैं, लेकिन अगर कोई कश्मीरी के नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं तो वो ये समझ गए होंगे कि मैंने इशारा किस तरफ किया। एनीवे नाम ये तो गपशप हमारे साथ साथ ही, और इसी तरह के हमारी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, ज़रूरी नहीं ये ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आ गए हैं या इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो दुनिया में निखर जाने वाले थे और ये निखर के सामने आ गए, लेकिन हम उन लोगों में भी घिरे हुए हैं जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, आपके आगे पीछे होते हैं, आपके अजीज व अकारब होते हैं, आपके ऐसे यार दोस्त होते हैं जो बचपन में आपके साथ खेलते हैं लेकिन कभी आप उनको देखते हैं कि वो ये भी कह सकते हैं आपके, वो आपके ही मुल्क के, आपके देश के जहाँ पे आप रहते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, कोई बड़े लेवल पे चले जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, कोई टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कोई बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन हर जगह पे इंसान तरक्की ज़रूर करता है क्योंकि लिख दिया गया है उसकी लक में, उसकी किस्मत में कि तुमने जो कुछ भी पाना है अपनी मेहनत से पाना है, और मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले अक्ल की ज़रूरत है।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
7: रेडियो बजार 97.1 FM।
0: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।

0: जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। खूबसूरत ट्रैक आपकी स्मार्टों की नजर थे, बारिशों का भी था बीच में ट्रैक, और बड़े ही जबरदस्त से मैशअप है ये मेरे पास। इंजॉय भी करते हैं आप उसको, साथ साथ सीखते भी हैं। मैं तो काफ़ी कुछ सीखता हूं क्योंकि हर मैशअप में ना मतलब कम से कम ना 300-400 ट्रैक्स होते हैं और हर ट्रैक कोई एक डेड लाइन का होता है, तो मेरा मजमून तो बड़ा ज़बरदस्त सा कंप्लीट हो जाता है। मैं तो यहाँ तक भी पहुँच जाता हूँ कि आगे मैंने करना क्या है। एनीवे, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो फिर तो आपकी और मेरी सोच की जो धारा है वो एक ही दिशा में बहती है, उसको कंट्रोल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस वक्त हमारा जो सेगमेंट है वो सेगमेंट बड़ा कमाल का, और सेगमेंट आने वाला है जनाब फजा आइडियाज। अब फजा आइडियाज में आज का जो सेगमेंट है बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जुबानें बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बायलैंगुअल माइंड जो होते हैं वो माइंडसेट होते हैं, वो माइंड कंट्रोल करते हैं आपके न्यूरोलॉजी की जो पावर है, न्यूरॉन जो आपके दिमाग के सेल्स हैं जो आपके बॉडी पार्ट्स को मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है इस पर रिएक्ट करो, फिर आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर रिएक्ट करते हैं और फिर आपको एक चीज़ का एहसास होता है कि आपके पास ऊपर वाले की इतनी बड़ी कुदरत एक दिमाग है, अगर इसको सीधा किया जाए तो कहते हैं पता नहीं कितनी लंबी इसकी ना वो तारे और रस्सियां बनती है, उनके हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीखने की या एक कोई ऐसी कला पड़ी होती है जो यूजली इंसान के पास नहीं होती है, दूसरे इंसानों में वो नज़र नहीं आती, दूसरे व्यक्तियों में वो नज़र नहीं आती, दूसरे पुरुष जो होते हैं उनमें वो नज़र नहीं आती, हमें उन्हें खोजना पड़ता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ऊपर वाला जब नवाजता है ना तो फिर कमाल नवाजता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, और ऐसे लोग ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अगर हम इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में देखें तब भी सामीन एक ही बात है कि यहाँ पर आप कुछ कहीं भी कोई भी कैरियर की शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कैबी है, कोई सेल्स की कर रहे हैं, कोई अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई अपनी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, या वट एवर जो भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड में आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपके पास मुख्तलिफ जुबानों के काम करने वाले लोग हैं। कोई हमारे श्रीलंकन भाई हैं, कुछ मद्रासी होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ प्योर उर्दू बोलने वाले हैं, कुछ अरेबिक बोलने वाले होंगे, कुछ मलयालम बोलने वाले होंगे, और इस तरह मुख्तलिफ जुबानें होंगी, कुछ बंगाली बोलने वाले होंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो आपका माइंड है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीख के अपनी एक डिफरेंट दुनिया बसा लेते हैं, यानी ना ऐसे भी लोग लाइफ में आते हैं, देखें कि वो शुरू किसी और लैंग्वेज से करेंगे, ख़त्म किसी और लैंग्वेज पे करेंगे, ज़रा मजाक की बात है तंज़ो मजाक के हवाले से, लेकिन बायलिंगुअल पर्सनैलिटी होना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसी वाले से खूबसूरत आइडिया है ये फ़ज़ा आइडिया के सेगमेंट में, फ़ज़ा आइडिया का सेगमेंट लेके आया हूँ मैं आपकी नज़र, नासिर खान आपके साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये खूबसूरत सफ़र। सुनिए कि बायलिंगुअल पर्सनैलिटीज़ कैसे होती हैं, ब्रेन कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या साइंस है, क्या तहकीक है, क्या टेक्नोलॉजी है, और रहिए फजा 97.1 एफएम के साथ।
1: Lingua was a bad thing, that it would confuse or hold people back, especially children. Turns out, we couldn't have been more wrong.
2: Learning new languages is an exercise of the mind. It's the mental equivalent of going to a gym every day. In the bilingual brain, all our languages are active, all at the same time. The continual effort of suppressing a language when speaking another, along with the mental challenge that comes with regularly switching between languages, exercises our brain. It improves our concentration, problem-solving, memory, and in turn, our creativity.
1: It's now widely accepted that there are huge benefits to being bilingual. A key breakthrough came back in 2007 in Toronto when Ellen Bialystok and her team made a discovery that shook the scientific community and has massive real-world implications.
3: It was the first study which suggested that bilingual people, people who speak more than one language, develop dementia 4 to 4.5 years later than those who don't. It was a powerful confirmation of the idea of cognitive reserve.
1: Now, what is cognitive reserve? Cognitive reserve is the idea that people develop a reserve of thinking abilities, and this protects them against losses that can occur through aging and disease. As well as delaying the onset of dementia, bilingual people have been shown to recover significantly better after a stroke. Learning anything new helps build cognitive reserve, but there's something special about language.
3: Language is particularly broad and complex. It affects ideas and concepts, perception, different sounds. The more complex a certain skill is, the more likely it is to have a positive effect on cognitive reserve.
1: So when is the best time to learn a new language? Well, here's part of the answer.
4: The brain is a complex set of neural networks. When you're learning a new language as a child, you're building neural networks. But when you learn a language later in life, you have to modify the existing networks and make more connections. Because learning languages later in life can be more challenging, the benefits can also be greater.
1: But a 2023 study at Great Ormond Street suggests this is just part of the story.
5: So we invited three groups of children that were aged 8 to 10. And we had a group of children who were monolinguals, a group of children who had early exposure to Greek and English from birth. They were our early bilinguals. And finally, we had a group who had been exposed to English between the ages of 2 and 5, and they were our later bilinguals. So what we did that no one had done before is that we asked the children to lie in the scanner while doing nothing and just staring at a cross. And during this, we measured their brain activity. So what we found that was really exciting for us is that our early bilingual group had the strongest connectivity in the network at rest. And this group of regions are regions that light up when we're doing nothing and just mind wandering. A little bit like if you're going to the gym every day, your muscles might look bigger at rest. Well, similarly, your brain might be better connected at rest because you are learning a language early. And this is something no one had found before.
1: And there's more.
6: One lesser known behavioral effect of bilingualism in both children and adults is the ability to see the other people's perspective or to understand that it is possible to have different points of view.
3: Recent studies have also found that people tend to react more emotionally in their first language and more rationally in a more abstract way in the second. And the way it is usually explained is that the first language is the one which we use to speak with family, with friends, in informal settings. The second language is usually learned at school, at the university, at work.
1: Scientists are discovering new upsides to being bilingual all the time. And it's not just our brains that benefit.
6: Learning new languages and speaking more than one language is very important not only for individuals but also for societies.
4: Learning new languages can open doors to new cultural experiences, life opportunities.
3: Different people, different communities, and different ways of seeing the world.
1: And with that, we'll say a final...
7: Masalama.
4: Zaijian.
5: Au revoir.
6: Arrivederci.
3: Goodbye. Do widzenia.

बिल्कुल जनाब, तेरी दरिया की आंखों का नहीं, तेरी आंखों के दरिया का उतरना बेहद जरूरी था। खूबसूरत ट्रैक्स इसलिए लगाए कि क्योंकि बहुत ही कम समय रह चुका है। खूबसूरत सा जनाब आज का जो फजा आइडिया था, आज का जो हैक था हमारी जिंदगी का, ये था कि इंसान की बायलैंगुअल पर्सनैलिटी कैसी होती है और क्या दिमाग किस तरह काम करता है, क्या माइंड सेट होता है इंसान का। ये छोटी मोटी चीज़ें आपने समझी, जैसा कि प्रोफेसर ली ने ये बताया कि इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं और जब इंसान मल्टी लेवल सीखने की कोशिश करता है तो ये ट्रैक्स भी इंजॉय कीजिए। मैशअप भी उन्हीं जबानों का एक हिस्सा है। फर्स्टली बेसिकली ये बता रहे थे कि जब आप एक जुबान, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपने इंग्लिश सीख लिया तो उसी पेज के ऊपर एक पेज आपने लगाया डिफरेंट कलर का, मतलब ये है कि आपकी लाइफ कलरफुल होती जा रही है बाईलैंगुअल होने की वजह से। दूसरी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लोगों की बातें उन्हीं की भाषा में समझ आ जाएंगी। समझ आने के साथ साथ आपका माइंडसेट भी खुलेगा और आपकी जो नेचुरल विल पावर है वो भी तेज होगी। लेकिन सामीन खूबसूरत सा प्रोग्राम था गुड मॉर्निंग नॉटिंगम।

हम लड़के और लड़की की ये प्रेम कहानी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी मुश्किल है तो कभी कभी मुझसे रब्ता कीजिए ताकि मैं आपको हल बता सकूं। वजीफे बताऊंगा, कुछ जादू टूने नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं होगा और महबूब होगा आपके कदमों में। एनीवे जनाब, ये तो थी हल्की सी गपशप के आपका थोड़ा सा जो माइंड सेट है वो एक्टिव हो जाए। खूबसूरत से ट्रैक्स आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। आपका मेज़बान नासिर खान गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के खूबसूरत से प्रोग्राम में आपसे चाहता है इजाज़त। कल फिर जनाब मुलाकात रहेगी आपसे, नए सब्जेक्ट होंगे, नए टॉपिक्स होंगे, नए आइडियाज़ होंगे, मोटिवेशन होगी, कुछ अनाउंसमेंट होंगी और उसके बाद हम तुम होंगे, बादल होगा। दुआ करें कल भी बादल हो। स्टे ट्यून्ड विद फज़ा 97.1 एफएम एंड डैब। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। गुड बाय गुड बाय गुड बाय नॉटिंघम।

0: it's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

सो वेल लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और लेकिन फिलहाल के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी हिदमत में पेश करती हूँ। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के उस पार टीवा डायलॉग का प्रॉपरली आगाज करेंगे।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुशामदीद। और हमारे सभी लिसनर्स जो जो अभी हमें ट्यून कर रहे हैं, सो आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और दुनिया के किस कोने से आप हमें ट्यून कर रहे हैं। सो वेल, किस तरह से आपने हमें बताना है कि आप हमें ट्यून कर रहे हैं और कहां से ट्यून कर रहे हैं। सो सिंपल सा तरीका है, आइए मैं आप सभी से शेयर करती चलती हूं। सो जी 01157100971 यह है बहुत छोटा सा मुख्तसर सा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि है एक रابطे का जरिया। ये वो जरिया है जिसके थ्रू आप हमसे अपने दिल की तमाम तर बातें शेयर कर सकते हैं। सो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं मौजूद, वो सभी बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ ये शेयर कर सकते हैं बल्कि बता सकते हैं कि किस तरह से हम किन टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और क्या ऐसे मौजूद हैं जो आप सुनना चाहते हैं और आपको किस तरह का म्यूजिक है पसंद। सो वेल, पूरी कोशिश यही की जाएगी कि दीवा डायलॉग में हम उन तमाम तरह चीजों को मौजूए गुफ्तगू लाएं जो कि हमारे लिसनर्स को है पसंद और आप ही की रिकमेंड की गई हो। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताती चलती हूं कि किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप कर सकते हैं हमें ट्यून बल्कि आप जान सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर तरह की मालूमात। सो किसी भी तरह की मालूमात, कोई भी इंफॉर्मेशन, या आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कोइंसिडेंट किस प्रोग्राम में है आने वाला। सो आप अपने कामों को उस हिसाब से तरतीब देकर ट्यून कर सकते हैं हमारी प्यारी प्यारी आवाजों को। और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन, सो उसका तरीका भी बहुत सिंपल सा है, आइए आपसे शेयर कर देती हूँ। आपको जाना होगा सिंपली एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो लिसनर्स, ये थे वो कुछ मुख्तसर से तरीके जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो एक एक करके मैंने आपसे शेयर कर दिए, अभी आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक इस प्यारे से दिन का आगाज कर चुके होंगे। वेल, आज है 2 सितंबर, यानी कि जो सितंबर का मंथ कल स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, आज उसका दूसरा दिन भी शुरू हो चुका है। सो ये दिन रिमाइंडर दे रहा है कि अब ये महीना बहुत तेजी से चलता चला जा रहा है, तो आपने हाथ पर हाथ रख के बिल्कुल भी नहीं बैठना बल्कि इस गौर व फिक्र में रहना है कि किस तरह से इस दिन को, इस महीने को, इस लम्हे को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। वेल, ये गौर व फिक्र तो साथ ही साथ चलती रहेगी क्योंकि है अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। सो ये तमाम तरह की सोच विचार चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप उठ चुके हैं और आपने सुस्ती और काहली को हैराबाद कर दिया है, सो अब जरा किचन की जाने बढ़िए और एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए क्योंकि एक नया एनर्जेटिक डे आपका मुंतजर है। सो अगर आप इस दिन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी को मजीद प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, सो यू नीड अ लॉट of energy. और फिर एनर्जी कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो फिर एक अच्छा हेल्दी मील ही होता है। सो हमेशा कोशिश किया करें कि आप, अगर से आपका दिल नहीं करता खाना खाने को, सो आप लंच स्किप कर सकते हैं, समहाउ डिनर भी स्किप कर सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट स्किप करना इम्पॉसिबल क्योंकि आपने एक नया दिन शुरू करना है, घर से बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया को फेस करना है और फिर बहुत सारे काम काज करने हैं, कहीं ऑफिस जाना है, बिजनेस जाना है या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो आपको बाहर की दुनिया, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो आप उन तमाम तर चैलेंजेस पर इसी सूरत में पूरा उतर सकते हैं जब आपके पास हो बहुत सारी एनर्जी, आपके पास वो हिम्मत, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ हो जिससे आप अपने दिन को, अपने आप में वो एबिलिटी पैदा कर सके ताकि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल ना रहे। सो ब्रेकफास्ट लास्ट में किया करें, कभी भी इसे स्किप मत किया करें।
अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सो ये एडवाइस मैं हमेशा उन्हें भी देती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट स्किप मत किया करें, क्योंकि इतना सारा काम करना होता है, घर से बाहर निकलना होता है, फिर थक हार के घर वापस शाम में जाना होता है। सो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, आई नो बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स एक्सक्यूज देती हैं कि नहीं हम बाहर से कुछ खा लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन घर के खाने की ही बात अलग होती है। आप बाहर से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से हेल्दी नहीं होता, हाइजीन नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि जब घर से बाहर निकलने लगे तो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया करें। और अब ज़रा बात करते हैं हमारे उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस की तरफ हैं रवा दवा। सो वेल लिसनर्स, अगर आप हैं अभी भी रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, या फिर आपकी डेस्टिनेशन लगे हसीन, तो इस खूबसूरत सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है रेडियो फजा 97.1 FM की हर तरह की आवाज़ों को ट्यून करके। सो आप हमें किस तरह से ट्यून कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताती चलती हूँ। आप हमें ट्यून कर सकते हैं फजा डैप के थ्रू, साथ ही साथ उन सभी लिसनर्स को जो किस वक्त ड्राइव कर रही है, मेरी एक बहुत ही हमदर्दाना सी एडवाइस है कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि लाइफ इज वेरी प्रिकॉशियस। सो आपकी हल्की सी गलती कोताही बन सकती है बहुत बड़े नुकसान का मौजब। सो आपने नुकसान का मौजब नहीं बनना, आपने अभी हजारों साल जीना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। सो कोशिश क्या करें कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो आपका पूरा फोकस, कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर होनी चाहिए। अगर हाँ आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चल रही है, कुछ आपको बॉदर कर रहा है या कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, सो उन तमाम तर चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठ कर नहीं, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से किसी खूबसूरत से पार्क में बैठ कर। सो हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त ऑफिस पहुंच चुके हैं या आपको मिल चुका है डिग्री का हैवी टास्क, सो अपने काम से लीजिए 1 से 2 मिनट की ब्रेक। और अगर आपके ऑफिस के आसपास किलो नवा में कोई ऐसी जगह मौजूद है जो कि नेचर के है बहुत करीब, तो आ जाइए इस खूबसूरत सी जगह में। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने ट्यून कर लेना है रेडियो फजा 97.1 FM को। तो जैसे ही आप ट्यून करेंगे आपको मेरी खूबसूरत सी आवाज़ सुनने को मिलेगी और हो सकता है कि यह आवाज़ आपकी ज़िंदगी को, आपके चंद लम्हात को बदल सकती है। सो कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है तो उसको ज़रूरत होती है 1 से 2 मिनट की ब्रेक की। सो जब कभी आपको भी ज़िंदगी में लगे कि अब ये काम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है या फिर ये आपके बस से बाहर की बात है, तो उसी वक्त फौरी तौर पर एक छोटी सी ब्रेक ले लिया करें। इससे क्या होता है कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है और जो काम आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हैक्टिक लग रहा होता है, वो 2 से 3 मिनट की ब्रेक के बाद बहुत सिंपल, बहुत आसान हो जाता है। सो ये एक सिंपल सी ट्रिक है डेली बेसिस पर। अच्छा, जब भी कभी मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है मेरे ऊपर, और मेरा मेन फोकस यही होता है कि मैं किसी तरह से जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लूँ और तमाम तर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लूँ। और मेन यही होता है कि मैं ज़रा जल्दी करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अपनी तैयारी कंप्लीट करके फ्री हो जाऊँ और फिर मैं आराम से, सुकून से, इत्मीनान से रेस्ट करूँ। सो उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि जो काम 10 मिनट में मुझे करना होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको 5 मिनट में कंप्लीट कर लूँ। और मिनिमम से मिनिमम जितना कम वक्त दरकार करूँ उतना ही बेस्ट है, इससे मैं ज़्यादा काम जल्दी कवर कर लूँगी। तो उस बीच ये होता है कि जब मैं कंटिन्यूसली पढ़ती जा रही होती हूँ तो समहाउ मैं थक जाती हूँ, और फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब मेरा दिमाग एनालिसिस करना बंद कर देता है और फिर मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं याद कर सकूँगी। सो मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 मिनट का एक पॉज बटन ऑन करती हूँ, एक ब्रेक लेती हूँ, कमरे से बाहर निकल कर बाहर की ताज़ा हवा, इसके अलावा नेचर या फिर किसी भी ऐसी खूबसूरत सी जगह में जाती हूँ,
एक ग्लास पानी पीती हूँ और बस अपने माइंड को रिफ्रेश करती हूँ और दो मिनट के लिए सोचती हूँ कि जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो इसका इफेक्ट ये होता है कि 2 से 3 मिनट के बाद मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है और मैं जब दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ अपना सिलेबस तो वो बहुत ईजी लगने लगता है मुझे. और वही चीज़ जो कि इस ब्रेक से पहले 10 मिनट में भी मुझसे कवर नहीं हो रही थी, वो 2 से 3 मिनट में बआसानी कवर हो जाती है. सो ये छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आप सभी को इसलिए दी ताकि आपको रियलाइज हो कि समटाइम्स लाइफ में ब्रेक बटन की बहुत ज़रूरत होती है. जब आप कॉन्टीन्यूसली काम करते चले जाते हैं तो फिर एक ऐसा पॉज बटन लाजमी होना चाहिए आप सभी की ज़िंदगी में भी, जो कि आपको रिफ्रेश करे और दोबारा से रिस्टार्ट करने में मदद दे. वेल लिसनर्स, ये तो थी मेरी लाइफ एग्जांपल. आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ एग्जांपल्स मुझे दे सकते हैं. किस तरह से देना है वो मैंने आपको बता दिया है. वेल अगर कोई ऐसा लिसनर है जिसने अभी अभी हमें ट्यून किया है, सो आपके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ. 01157100971 ये है हमारा बड़ा प्यारा सा नंबर, तो जल्दी से कर लीजिए इसको सेव. सेव करने के बाद आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम आज के प्रोग्राम के हवाले से, आपके दिन के हवाले से, या फिर मामूलात ज़िंदगी के हवाले से है तो आपने लिखकर हमें भेज देना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पैगाम को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं. साथ ही साथ आप अपने किसी प्यारे चाहने वाले को कोई भी खूबसूरत सा सुंदर सा गाना कर सकते हैं डेडिकेट. सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं. वेल पूरी कोशिश की जाएगी कि हम आपके पसंदीदा ट्रैक्स को ही प्रोग्राम की जीनत बनाएं. सो दे लिसनर्स, अभी फिलहाल वक्त हुआ है टीवा डायलॉग में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो जब तक हम इस कमर्शियल ब्रेक पर जाते हैं आपने क्या करना है, आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और थ्रू व्हाट्सएप नंबर, थ्रू SMS अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहना है. सो ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे और बहुत सारे मजे मजे की गपशप करेंगे, कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी और साथ ही साथ कुछ आपको मैं अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाऊंगी और आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, आज के मंथ के हवाले से भी, और हमारी डिवर्स के लिए भी है बहुत कुछ एक्साइटिंग. सो आपने कहीं पर भी मत नहीं जाना. स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

are back. A very warm welcome to all my beautiful listeners who are listening me right now. तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप ट्यून कर रहे हैं डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किया था हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, सो ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक मुझे इतने सारे नोटिफिकेशन आए हैं एंड अलॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि एक गाना शो में शामिल किया जाए। सो जैसा कि आप सभी को है मालूम कि हम प्रोग्राम में वही म्यूजिक ऐड करते हैं जो हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। सो आइए मिलकर सुनते हैं, ये बहुत ही इमोशनल सा सॉन्ग है, है भी थोड़ा पुराना लेकिन स्टिल वाइब बहुत अच्छी है। सो आप भी सुनकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्यारा सा ट्रैक, और मुलाकात होती है ट्रैक के उस पार।

वेल लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक? आई नो ये थोड़ा सा इमोशनल है, और बेसिकली अगर ट्रैक की हिस्ट्री देखी जाए तो ये ट्रैक दिलजीत दोसांझ के उन स्टार्टिंग इराज में से है जब उन्होंने न्यू सिंगिंग स्टार्ट की थी. सो इस हवाले से ट्रैक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वाइब बहुत अच्छी है कि मुझे भी. वेल, आप भी मुझे इस तरह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ट्रैक्स रिकमेंड कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी चाहने वाले, किसी लव्ड वन को कोई भी प्यार सा ट्रैक डेडिकेट करें, सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं. तो लिसनर्स, जैसा कि सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, द वेदर इज चेंजिंग नाउ. अब आप सभी को फील होगा कि हवा में हल्की हल्की सी तब्दीली रोनुमा होना शुरू हो चुकी है, और इसी सुहाने महीने में पैदा होने वाले वो लोग. अब जरा बात करते हैं उन सभी लोगों की जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है सितंबर में. सो वेल लिसनर्स, अगर आप भी सितंबर में पैदा हुए हैं या आपका कोई स्पेशल समवन सितंबर में पैदा हुआ है, तो अगले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके ही जोडियक साइन की. सो सितंबर के मंथ में पैदा होने वाले लोगों के पास तो बहुत ही यूनिक और पावरफुल जोडियक साइंस होते हैं. द फर्स्ट इज जो कि फर्स्ट से लेकर 22 सितंबर तक पैदा होने वाले लोग हैं, उनको मिलता है सॉरी. सो इस जोडियक साइन नेम इज वेगो, और 23 सितंबर से एंड तक पैदा होने वाले लोग होते हैं लिब्रा. चलिए आइए बारी बारी डिस्कस करते हैं इन दोनों जोडियक साइंस को, और साथ ही साथ देखते हैं कि इन दोनों जोडियक साइंस में पैदा होने वाले लोग के पास क्या खास क्वालिटीज होती हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इन सभी के बारे में बात करते हैं. तो चलिए पहले हम बात करते हैं हमारे विर्गोस की. सो विर्गो यानी कि परफेक्शनिस्ट का दूसरा नाम कहा जाता है. अगर आपका भी कोई फ्रेंड विर्गो है तो आपको पता होगा कि उनका कमरा हमेशा क्लीन होता है, उनके सारे प्लान्स हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि दे आर रूल्ड बाय मर्करी, इसीलिए इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है. अब जब बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ की, तो ये एक्सट्रीमली एनालिटिकल और हेल्पफुल होते हैं. ये हमेशा कोशिश करते हैं कि ये दूसरों की प्रॉब्लम्स को झट सॉल्व कर दें, और इनकी अपने ज़िंदगी में तो बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान करके चलते हैं. यानी कि जब वो कोई भी नया काम करने लगते हैं तो सबसे पहले वो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने के बाद प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सो इसीलिए वर्गोस को परफेक्शनलिस्ट कहा जाता है. सो ये तो हो गई इनकी स्ट्रेंथ. अब जरा चलते हैं वीकनेसेस की जानिब. सो विर्गो में क्या क्या वीकनेस होती है मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो बेसिकली विर्गोज बहुत ही परफेक्ट होते हैं, बट ऑन द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर भी होते हैं. वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत त्वचा देते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी फ्रेंड विर्गो है, सो वी बोथ आर हैविंग फन, आप उसके साथ बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, अच्छा भला टॉपिक चल रहा है, एंड सडनली आपने अचानक से कुछ कह दिया है. सो वो क्या करेंगे कि वो आपकी बात को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे. हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ऐसी ना हो, आप पर रूड ना हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सो उनको हर बात बहुत ही बड़ी लगती है. सो ये तो हो गई इनकी वीकनेस. सो आइए ज़रा एक ओपिनियन देते हैं हमारे तमाम तर विर्गो लिसनर्स को. सो डियर विर्गोस, थोड़ा सा चिल रहा करें और हर चीज़ में परफेक्शन मत ढूंढा करें, क्योंकि परफेक्शन बहुत मुश्किल होता है. और आई नो जितने भी मेरी विर्गो फ्रेंड्स हैं वो क्या करती हैं, इस परफेक्शनिस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और एक काम करेंगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर क्लिक करेंगी, सो उन्हें वो पिक्चर परफेक्ट नहीं लगेगी, तो वो एट द सेम टाइम 10 से 15 पिक्चर्स क्लिक कर लेंगी, लेकिन जब तक वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती जहां उन्हें लगता है कि ये परफेक्ट है, वो उस वक्त तक मेहनत करती रहेंगी. सो थोड़ा चल रहा करें और इतनी ओवर थिंकिंग मत किया करें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है. ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, लोग कहते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को अपने साथ जोड़ लेंगे या फिर हर बात को बहुत डीपली जाकर सोचेंगे, तो फिर ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा.
अब आते हैं हमारे सितंबर के दूसरे जोडियक साइन की जानिब, यानी कि 23 सितंबर से ऑनवर्ड्स। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिब्रा। अब लिब्रा का जो सिंबल है, इसको कहा जाता है द स्केल्स, यानी तराजू। एंड ट्रस्ट में, इनका पूरा फोकस लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में ही लगा रहता है। दे आर रूल्ड बाय वीनस, प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी। इसीलिए लिब्राज बहुत चार्मिंग, स्टाइलिश और पीसफुल होते हैं। इनका लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फन लविंग होते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि आसपास इर्द गिर्द की कम्युनिटी के साथ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखना, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जहाँ पर भी हों, लोग इनसे मुतासर हों, लोग इनसे दोस्ती करना चाहें, और कि बहुत ही ज़्यादा फन लविंग होते हैं। सो इसी वजह से इनकी ज़िंदगी भी बैलेंस रहती है, क्योंकि ये जो जोड़ी साइन है वो तराजू से मुहातिब किया जाता है। सो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इनकी ज़िंदगी कितनी बैलेंस होती है। सो अब जरा बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ की, कि लिब्रा के पास क्या क्या हैसियत होती है। सो इनका अमेजिंग सोशल स्किल होता है। ये इस तरह खूबसूरती से बात करते हैं कि अगर कोई इनका एनिमी भी होगा तो वो भी इनके अंदाज़े गुफ्तगु से मुतासिर हो जाएगा। सो ये इनके पास एक बहुत ही खास स्पेशल एबिलिटी होती है, जो वर्गोज के पास बिल्कुल नहीं होती। मैंने मोस्टली देखा है जितने भी वर्गोज होते हैं वो बहुत रूड होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। सो अगर वो नॉर्मली भी किसी से बात कर रहे होंगे, सो उनका वे ऑफ टॉक कुछ इस तरह से होगा कि लोग समझेंगे कि ये सामने वाला मुझसे लड़ रहा है या फिर कितनी हार्श ट्यून है। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्यून, देयर बिहेवियर, वो नॉर्मल बात भी करें तो लोगों को लगता है कि गुस्से में है। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड जो हमारे लिब्रास हैं, वो जितने भी लोगों से बात करें उनका अंदाज़े गुफ्तगु इतना खूबसूरत होता है कि उनका दुश्मन भी मुतासिर हो जाता है। अब जब बात कर लेते हैं इनकी वीकनेसेस की, सो इनकी वीकनेस कुछ यूं है, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। आई नो ये बहुत फन लविंग होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत काम जल्दी जल्दी स्मूथली करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इनसे सिंपली पूछ लें कि खाने में क्या बना है, और ये 3 घंटे सोचने में लगा देंगे रिप्लाई करने से पहले। सो ये इनका एक वीक पॉइंट है, या कर लो वीकनेस, बट इतनी खास वीकनेस नहीं है। सो वेल लिसनर्स, ये तो हमारे लिब्रास ही बता सकते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? सो आप ज़रा बताइए मुझे कि क्या जो सब मैं कह रही हूँ ये सब ट्रू है या नहीं। बट ओवरऑल, चाहे आप वर्गो हैं या हैं लिब्रा, सितंबर बॉर्न्स आर नेचुरली स्मार्ट, लॉयल और बहुत ही रिलायबल दोस्त होते हैं। हार्ट ऑफ गोल्ड होता है और ये अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं कि आपका कोई दोस्त वर्गो या लिब्रा है, या आप वर्गो या लिब्रा में से कोई एक है। सो आप मुझसे ये शेयर कर सकते हैं कि जो सब क्वालिटीज़ मैंने इन दोनों ज़ोडियक साइंस के बारे में बताई हैं, क्या वाकई वो इसी तरह से हैं या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। सो डू लेट मी नो 0115710097 थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर। सो मैंने सोचा कि जैसा कि सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, सो ज़रा सितंबर बॉन्ड्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ज़रा डीवा डायलॉग में नॉर्मल रूटीन से हट के डिफरेंट तरह के टॉपिक को शामिल किया जाए। सो अगर आप में से किसी का भी आज है जन्मदिन, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि क्या जो क्वालिटीज़ मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ एज इट इज़ आप में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। सो दे लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है इस वक्त एक अदद खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक को सुनने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक। सो लिसनर्स, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रैक पसंद है, तो मैं वो ट्रैक लाजमी प्रोग्राम में शामिल करूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ वो मेरा खुद का पसंदीदा है। सो कुछ गाने आपके पसंद के भी सुने जाते हैं, तो क्यों ना कुछ गाने मेरे भी पसंद के शामिल किए जाएं। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात, और फिर गपशप का सिलसिला जारी करेंगे।

एंड वी आर बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद इन डीवा डायलॉग। तो लिसनर्स कैसा लगा आपको ये प्यारा सा ट्रैक? वेल, ये ट्रैक मैंने लाइफ के उस स्टेज पर सुना था आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले। सो आज भी जब कभी मैं ये गाना सुनती हूँ तो वापस से उसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग में एकदम से खो सी जाती हूँ। सो आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा कि जब आप किसी जगह से गुजरते होगे या फिर किसी एरिया को देखते होगे या किसी अपने दोस्त वगैरह से मिलते होगे या कोई भी प्यारा सा ट्रैक या कोई खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस स्मेल करते होगे तो आप एक पुराने अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ में खो जाते होगे जहाँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। वेल, मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम इंसान बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रे हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमारी थिंकिंग यही होती है कि आई विश कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो मुझे बस ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी लाइफ यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। वेल, जब वो तमाम तरह चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं सो आप उस चीज़ को उस तरह से सेलिब्रेट ही नहीं करते और उस तरह से फील ही नहीं करते कि देयर वाज अ टाइम इन योर लाइफ जब आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड हुआ करते थे। सो आज ही से खुद के साथ अहद कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी की तमाम तरह छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगी। वेल, डिपेंड ये नहीं करता कि आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करो तभी आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करो या फिर लोगों से अपनी अचीवमेंट शेयर करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ छोटा सा भी तब्दील होता है, कुछ ऐसा जो आप एक लंबे समय से तब्दील करना चाहते थे, तो आई थिंक सो कि आपको उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए और बी प्राउड ऑफ योर ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप आज इस मुकाम पर मौजूद हो जहाँ फॉल कर रहे हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन लाइफ बहुत कम लोगों को ये मौका, ये चांस देती है कि वो उस मुकाम तक पहुँच सकें। सो ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑलवेज प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो लिसनर्स, अभी जैसे ही ट्रैक चल रहा था तो स्क्रॉल करते करते मेरी आंखों के सामने से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन गुजरी, तो मैंने सोचा कि जैसे ही ये ट्रैक ख़त्म होता है तो मैं ये खूबसूरत सी प्यारी सी लाइन अपने सभी लिसनर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। सो द लाइन सेज, ऑलवेज अ बिलीवर दैट देर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो हमेशा इस चीज़ पर यकीन रखा करें कि हर एक काम का सही वक्त आता है। सो अगर कोई काम आज नहीं हो पा रहा तो हो सकता है इसमें गॉड की कोई ना कोई मसलहत हो, कोई ऐसी बात हो जो आप ना जानते हो, जो आप ना समझते हो, लेकिन गॉड समझता हो। सो अगर कोई चीज़ ताखीर से हो रही है, इट डजेंट मीन कि वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, इट डजेंट मीन कि आप उसके लिए उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे। बाद अवकात ऐसा होता है कि टाइम आपका साथ नहीं देता, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है और हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। सो हमेशा सब्र किया करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना किया करें, क्योंकि जल्दबाजी शैतान का काम है। सो वेल लिसनर्स, इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात के साथ एक अदद मजीद प्यारा सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक। सो लिसनर्स, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का ट्रैक सुनना है या फिलहाल के लिए कौन सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल किया जाए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो चुका है हमने अरिजीत सिंह का कोई भी गाना नहीं सुना, तो आइए आज सुनते हैं अरिजीत सिंह का कोई प्यारा सा ट्रैक। सो मुझे 1 से 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से ढूंढ लेती हूँ ट्रैक ताकि फिर हम उस ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो फिलहाल के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

जी तो लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए आप ये प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करें एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी टाइनी ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

बैक, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तर सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आप सभी की मेजबान जैनब फातमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट शो द डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप पे। डियर लिसनर्स, ब्रेक से पहले हमने काफी डिफरेंट तरह के पहलुओं के बारे में बातचीत की, सो अब वक्त आ चुका है हमारे प्रोग्राम के उस सेगमेंट की जाने बढ़ने का जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि आपके दिन में लेकर आता है बहुत सारी पॉजिटिविटी। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर या फिर पहलू में फंसे हुए हैं जहां आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आप कुछ भी फिक्स नहीं कर पा रही या फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, होता है ना समटाइम्स इंसान अपनी करंट सिचुएशन से इस कदर डीमोटिवेट हो जाता है कि बस उसे लगता है कि ज़िंदगी में जो वो चाहता है उसे वो नहीं मिलता, और जिस तरह से हमने चीज़ों को प्लान किया होता है चीज़ें बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलती चली जा रही होती हैं। इसी तरह की जो कश्मकश है उसको दूर करने के लिए और आपकी ज़िंदगी से डीमोटिवेशन को ख़त्म करने के लिए डेली बेसिस पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट्स जो कि ना सिर्फ आपके इस दिन को बल्कि आपकी ओवरऑल ज़िंदगी को तब्दील करते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट्स। सो आपसे आज का फर्स्ट कोट शेयर करती हूँ। सो अवर फर्स्ट कोट सेज, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट अ फाइनल, इट इज द कवरेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अक्सर एक बार फेल होकर इंसान हिम्मत हार जाता है या एक बार कामयाब होकर इंसान बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होकर बैठ जाता है, ऐसा लगने लगता है कि बस अब सक्सेस मिल चुकी है, सो अब जिंदगी में कुछ भी और हासिल करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कोट हमें सिखाता है कि कामयाबी कोई आखिरी मंजिल नहीं है और ना ही नाकामी का मतलब है कि अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। असल चीज़ है कवरेज, यानी वो हौसला जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर करता है और आपको मोटिवेट करता है कि बस आगे चलते चले जाओ। सो अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं सो अभी आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, आपको मज़ीद इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और मज़ीद और भी चीज़ों को हासिल करने की ज़रूरत है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप फेल हो चुके हैं तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, आपको ज़रूरत है कि आप दोबारा से कोशिश करें, और हो सकता है कि आपकी जो ये कोशिश हो ये रायगा ना जाए और आप इस कोशिश में 110% कामयाब हों। सो बस आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है रुकने की नहीं, बस आगे चलते चले जाने की। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोट, आई होप यू गेट माय पॉइंट। साथ ही साथ अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन चल रही है जो हमारे इस कोट से रिलेट कर रही है, सो डू लेट मी नो 01157100971। तो इसने आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के सेकंड मोटिवेशनल कोट की जानिब। सो आज का हमारा जो सेकंड इंस्पिरेशनल कोट है वो है ऑन बिलीविंग इन योरसेल्फ, यानी कि खुद इत्मादी पे। सो अवर सेकंड कोट सेज, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ अवे देयर। सो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या वक्त सही नहीं है, लेकिन माय डियर लिसनर, सबसे पहला हमारी जो भी लड़ाई होती है वो अपने दिमाग से होती है। जब आप खुद को खुद पर यकीन करना सिखा देते हैं तभी
वो मरहला शुरू होता है जहां आप कामयाबी की सीढ़ी पर चलना शुरू करते हैं। तो समझ लीजिए आपने आधी जंग वहीं जीत ली, बाकी आधा रास्ता तो आपके हार्ड वर्क और खुद एतमादी से खुद ब खुद सर हो जाता है। सो सबसे पहले, अगर आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, चाहे आप किसी पहाड़ के धाने पे ही क्यों ना खड़े हों, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं कि मैं इसको सर कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। खुद एतमादी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हर तरह का टैलेंट उनके पास होता है, बहुत अच्छे होते हैं, चाहे एजुकेशन हो इन रियल लाइफ या फिर उनकी घरेलू ज़िंदगी, बट उनमें एक चीज़ की कमी होती है कि वो सेल्फ डाउट करते हैं। हमेशा ये समझते हैं कि मैं दूसरों से कमतर हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकता, हालांकि वो कर सकते होते हैं, उनमें वो एबिलिटीज़ होती हैं, बट उनको खुद पर यकीन नहीं होता। सो अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप हर नया कदम उठा सके, तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करने की ज़रूरत है। जब आप खुद पर इत्मीनान यकीन करेंगे, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत और आसान बन जाएगी। लिसनर्स, ये थे हमारे कुछ मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट्स। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और पूरी कोशिश तो यही थी कि इनके जरिए आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली रोनमा की जाए, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आई जाए। सो फिलहाल के लिए वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक को शामिल करने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और क्योंकि हम और आप तो ठीक 12 बजे तक साथ ही साथ हैं, सो गपशप का ये सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा।

चलिए तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक? वेल, अगर हम बात करें म्यूजिक रेवोल्यूशन की, सो ड्यूरिंग अ फ्यू कपल ऑफ ईयर्स पाकिस्तान ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है इन म्यूजिक। वेल, अब पाकिस्तान के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जेंजे म्यूजिक आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनमें से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब्दुल हनान का अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्लस कंपोजिंग बहुत अच्छी होती है एंड द लिरिक्स, और इनके गाने हमारी तमाम तर जेंजी आवाम को काफ़ी हद तक इम्प्रेस और अट्रैक्ट कर रही हैं। फ्यू ईयर्स अगो मुझे भी ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी म्यूजिक आर्टिस्ट एज सच कुछ खास कोलैब नहीं कर रहे और ना ही कुछ अच्छा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अब रिसेंटली कुछ ईयर्स से पाकिस्तान बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहा है, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। सो डियर लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे थर्ड मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट की जानिब। सो उम्मीद तो यही है कि ये कोट ना सिर्फ आपके दिन को, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा, और जितनी भी डीमोटिवेशन है या फिर होता है ना कि बाज़ औक़ात चीज़ें इंसान को बॉदर कर रही होती हैं और उसको समझ भी नहीं आ रहा होता कि इंसान को क्या चीज़ है जो कि अफेक्ट कर रही है, सो हो सकता है कि ये कोट आपको उन तमाम तरह की चीज़ों को समझने में मदद दें। सो आवर थर्ड कोट सेज, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। सो अक्सर लोग बैठकर किस्मत को कोस रहे होते हैं, काश मुझे कोई अच्छा मौका मिले, काश मैं ज़िंदगी में ये अचीव कर सकता, या फिर अगर नेपोटिज्म होता या मुझे कोई फेवर मिल जाती सो आई कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये बहुत सारे बहाने होते हैं जो इंसान के माइंड में गर्दिश कर रहे होते हैं, पर सच तो ये है कि अच्छे मौके चलकर कभी भी खुद इंसान के पास नहीं आते, उनको खुद क्रिएट करना पड़ता है। आज से ही मेहनत शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, और आप देखेंगे कि आपका जो रास्ता है वो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। सो ये जो लोग समझते हैं ना कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ज़िंदगी हमें खुद मौका देगी, हमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर करियर की अपॉर्चुनिटीज़, सो माई डियर हनी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और हमेशा छोटे स्टेप से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का भी ये माइंडसेट होता है कि व्हेन वी ग्रेजुएट तो हमें स्टार्टिंग में ही बहुत हाई जॉब मिल जाए, सो इस तरह से भी नहीं होता। आपको फ्यू स्टेप्स स्टार्ट करने पड़ते हैं, पहले एक छोटा स्टेप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आता है वो एक मोमेंट जहां आप वो अचीव कर लेते हैं जो आपको दर हकीकत चाहिए होता। सो मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेंगी। सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल कोट। एक लास्ट कोट रहता है जो कि आपसे शेयर करती हूँ और फिर हम इस सेगमेंट को करते हैं वाइंड अप। So our last quote says, you cannot control the behavior of others, but you can control your responses to it. So life में हमेशा लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं या ऐसी बातें करेंगे जो आपको बुरी लगेंगी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप दूसरों को बदल नहीं सकते, आपका हाथ सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर है जो आपके इख्तियार में हैं। और दूसरों को कंट्रोल करना या फिर दूसरों के रिएक्शंस को चेंज करना वन ऑफ दोज थिंग्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इफ़ यू इरिटेट तो लोग बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अगर आप बॉदर होना छोड़ देंगे या आप उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तभी उनको रियलाइज होगा कि आपको उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, आप अपने सीधे रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। सो आपने क्या करना है, इंस्टेड आप के किसी को रिप्लाई करते हैं किसी के बैड बिहेवियर पर, रूड कमेंट्स पर, आप सिंपली अपना रिएक्शन कंट्रोल करें। आप बिल्कुल भी कोई रिएक्शन ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कहा जाता है नो आंसर इज़ ऑलवेज अ आंसर। सो अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो उनको उनका जवाब खुद ही मिल जाएगा। बस आप क्या किया करें, चल रहा करें, अपनी ज़िंदगी इंजॉय किया करें, और नेगेटिविटी को, हेट कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी कामयाबी आपसे कभी भी छीन नहीं सकती। सो
सो द लिसनर्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल सेगमेंट। आई होप आपको आज का ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, सो आप हमसे पूछ सकते हैं 01157100971 थ्रू दिस नंबर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की क्यूरी को दूर किया जाए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिसनर्स होते हैं। और भी मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें, या कोई ऐसी चीज़ जो आप पसंद करते हैं और हम उसको अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएं, तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ये नंबर ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि है एक रास्ता जो आपको हमसे और हमें आपसे जोड़ता है। सो आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहा करें और इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहा करें। सो वेल लिसनर्स, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, जो कि है हमारा द स्पाइस किचन। और हमेशा की तरह हमारी डिवाज इसी वेट में है कि कब उनसे आज की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी शेयर की जाए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर में आप सभी अपनी नोटबुक, डायरी या फिर कॉपी रेडी करती हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए, उतनी देर में क्यों ना एक प्यारा सा ट्रैक सुन लिया जाए। तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पार हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे।

लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो स्टे ट्यून विद अस।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से खुशामदी। तो लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट प्लेस। तो लिसनर्स, आई नो हमारी डीवाज काफी वेट कर रही होंगी हमारी आज के द स्पाइस किचन सेगमेंट का, सो आपके इस वेट को कर देते हैं खत्म। और आप सभी ने अपनी नोटबुक्स तो रेडी कर ली ही होंगी, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स। सो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली इन एशियन फैमिलीज। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप मोस्टली इस रेसिपी को घर में ट्राई करना प्रेफर नहीं करते, आप कोशिश करते हैं कि जब कभी आप कहीं बाहर जाएं तो इसको ट्राई कर लें। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस रेसिपी को घर पर बनाते हैं विद सिंपल मेथड, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके जो कि घर पर बआसानी दस्तयाब हों। सो अभी तक आप सबने गेस कर लिया होगा, वेल अगर आपने नहीं गेस किया तो बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये वीक टोटली एशियन कुजीन से रिलेटेड, सो कल भी हमने एक एशियन डिश ही बनाई थी, तो आज भी हम एक एशियन रेसिपी ही ट्राई करेंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट क्रीमी हांडी। सो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बोनलेस हाफ केजी, जिसे आपने अच्छे से वॉश करके क्यूब्स में कट कर लेना है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है योगर्ट 1 एंड 2 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ,

साथ ही साथ फ्रेश क्रीम 1.5 कप, अनियंस 2 मीडियम साइज के, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 टीस्पून, काजू या फिर बादाम का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, बटर या फिर कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। वेल, जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो आप दोनों में से ट्राई कर सकती हैं। और आता है हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी 1 टीस्पून। सो ये थे वो सब इंग्रेडिएंट जिनका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे ये मज़ेदार से झटपट यमीएस्ट रेसिपी। सो दी लवली डिवाइस, अब वक्त आ चुका है कि आप किचन में आ जाएं और चेक कर लें क्या आपके पास ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं या नहीं। सो अगर कोई भी इनमें से मिसिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इजीली सुपरमार्केट से जाकर आसानी से परचेज कर सकती हैं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में इस रेसिपी को रेडी करें ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सॉरी वाज, जितनी देर में आप ये चेक करते हैं कि क्या आपके पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं या नहीं, उतनी देर में एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। ये गाना मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक और फिर स्टार्ट करेंगे हमारी आज की रेसिपी।

सो द लिसनर्स, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की जाने बढ़ते हैं. सो स्टेप नंबर वन इज मैरिनेशन. सबसे पहले हम चिकन में दही, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सफ़ेद मिर्च पाउडर, इन सभी को शामिल करके 20 से लेकर 30 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे. अच्छा, कोई भी रेसिपी हो, रेसिपी की खासियत यही होती है कि हम जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन रखते हैं उतनी ही ज़्यादा लजीज हमारी रेसिपी रेडी होती है. सो अगर आपके पास बहुत सारा वक्त है तो आप इसे 1 से 2 घंटा के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है या आपको जल्दी जल्दी से रेडी करना है खाना, तो आप मिनिमम 20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करके रख दें. सो अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, यानी कि अब हम बनाएंगे हमारी इस रेसिपी की बेस. सो हम कोई भी कढ़ाई या फिर पैन चूल्हे पे रख लेंगे, कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे. अगर आपके पास कुकिंग ऑयल ना हो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें शामिल करेंगे प्याज और उसे 2 से लेकर 3 मिनट तक पका लेंगे, यहाँ तक के रंग बदलना नहीं चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट क्रीमी कढ़ाई. सो अगर ज़्यादा देर हम प्याज को कुक करेंगे तो इससे ये होता कि हमारा प्याज डार्क कलर का हो जाएगा और ओवरऑल हमारी रेसिपी के कलर को इम्पैक्ट करेगा. सो बारी आती है इसमें मैरिनेटेड चिकन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने की. सो हम बारी बारी इन दोनों को ही शामिल कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई और 5 से लेकर 6 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक हमारे चिकन का रंग सफ़ेद ना हो जाए. सो जैसे ही हमारे चिकन का रंग हो जाता है सफ़ेद, सो अब इसमें शामिल करेंगे जीरा, धनिया, उसके साथ साथ काजू बादाम का पेस्ट और भी बाकी मसाला जात. सो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ढक कर लो फ्लेम पर 10 से लेकर 15 मिनट्स तक इसे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए, क्योंकि वाइट क्रीमी हांडी की खासियत यही होती है कि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है. सो जितना अच्छा आपका चिकन कुक होगा उतनी ही डिलिशियस आपकी रेसिपी होगी. सो जब चिकन गल जाए और ऑयल अलग हो जाए तो आंच बिल्कुल हल्की कर दें, इसमें फ्रेश क्रीम, काली मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी शामिल कर दें और बस इसे 2 से लेकर 3 मिनट्स तक दम पर हल्की आंच पर छोड़ दें. आपकी मज़ेदार सी हाथों हाथ ख़त्म हो जाने वाली वाइट क्रीमी हांडी हो गई है तैयार, और वो भी बिल्कुल कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से नोश फरमाते हैं. चाहे तो इसे गरम नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर हमीरी रोटी के साथ. वेल, दोनों ही तरह ये रेसिपी बहुत यमी और डिलिशियस लगेगी. सो डियर लिसनर्स, ये थी आज की हमारी द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. सो लाजमी इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा. वेल, जब मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही थी तो इतनी डिलिशियस लग रही थी कि बस दिल कर रहा था कि हम अपने प्रोग्राम को कर दें थोड़ी देर के लिए स्किप और खाने की जानिब बढ़ें, लेकिन चूँकि प्रोग्राम करना था तो फिलहाल तो हम खा नहीं सकते. वेल, आप लाजमी बनाइएगा इस रेसिपी को और बनाने के बाद मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी. और इसके अलावा आप ये भी हमें बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं.

सो वेल लिसनर्स, अब से बात कर लेते हैं हमारी आज की सेकंड रेसिपी की। इट्स नॉट अ रेसिपी, इट्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। सो जब हम इतना मज़ेदार सा चटपटा सा खाना खा रहे होते हैं तो फिर दिल करता है कुछ साथ में रिफ्रेशिंग भी हो। सो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी ये रिफ्रेशिंग मिंट ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। और मज़े की बात यह है कि जस्ट 2-3 इंग्रेडिएंट से बासानी बन जाएगी, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस रेसिपी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो अभी हम बनाने जा रहे हैं मिंट ड्रिंक। अब किस तरह से इस ड्रिंक को बनाना है, तो सबसे पहले आपसे इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ। सो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिंट लीव्स, 5-7 अदद, साथ ही साथ ब्लैक पेपर पाउडर, जस्ट अ टाइनी अमाउंट, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, लेकिन यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, लेमन 1-2 अदद, और साथ ही साथ विनीगर जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिंट लीव्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि पुदीने का एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाए, क्योंकि इस टेक्सचर को ही हम अपनी ड्रिंक के अंदर ऐड करेंगे। सो जैसे ही टेक्सचर रेडी हो जाएगा, अब बारी आती है हमारे फाइनल वन स्टेप की। सो अब आप ले लीजिए 7-Up या फिर स्प्राइट, जो भी दोनों में से आपको पसंद हो उससे आप ग्लास में ऐड कर लें। उसके ऊपर आप मिंट का ये ब्लेंड किया हुआ पेस्ट शामिल करें, साथ ही साथ आप लीमू स्क्वीज़ कर लें और फिर जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनीगर इसमें ऐड कर दें। और फिर से हम लास्ट में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और नमक, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और आपकी मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक हो जाएगी तैयार। आई नो जिस तरह का मौसम चल रहा है, अक्सर औकात होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं इस चक्कर में कि खाना बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस है, सो फिर अक्सर डाइजेस्ट करने का मसला बन जाता है। तो ये ड्रिंक आपको उसमें काफ़ी हेल्प आउट करेगी और साथ ही साथ आपको बिल्कुल रिफ्रेश और तरोताज़ा कर देगी। सो लिसनर्स, ये थी हमारे आज की द स्पाइस किचन की रेसिपीज़। आई होप आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, लाजमी आज ही ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। सो इसी के साथ ही हमारा यानी कि टीवर डायलॉग का ये जो सफ़र ठीक 10 बजे मैंने और आपने साथ में शुरू किया था, अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेल, प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश कीजिएगा कि आज के इस दिन को खूबसूरत बनाएं, अपने वक्त को अच्छे कामों में सर्व करें, प्रोडक्टिव बने, और जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, डिमोटिवेशन है, इनको अपनी ज़िंदगी से कोसों दूर रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और कभी भी इस ज़िंदगी को उन लोगों की वजह से स्पॉइल मत किया करें जो कि आपको खुश नहीं देख सकते या फिर आपकी कामयाबी में रुकावट बनना चाहते हैं, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि आपके क्लोज वंस में से कितने ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से पसंद करते हैं और कितने ऐसे हैं जो महज आपसे हसद करते हैं। सो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिया करें, खुश रहा करें और अपने प्यारों का ख्याल रखा करें। और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी एंडलेस गॉसिप्स के साथ। सो फिलहाल के लिए तो प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं और आप सभी के लिए एक अदद प्यारा सा ट्रैक मैं प्ले कर देती हूँ, और इस खूबसूरत से ट्रैक को सुनते सुनते प्रोग्राम को अलविदा करते हैं। ओके दे लिसनर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुने हैं, बी सेफ बी केयरफुल रहते आते ड्राइव कीजिएगा। पता नहीं सुबह से मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, ना जाने क्यों मुझसे बात नहीं की जा रही, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो उसी के साथ साथ हमेशा के तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। और फिर वही बात आ गई कि जब मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में जो ट्रैक शामिल करती हूँ, जिस तरह का ट्रैक शामिल करती हूँ, बस फरमाइशें भी फिर उसी तरह की ही आती हैं। सो कोशिश यही रहेगी कि झलकते फड़कते ट्रैक्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो अगर आप प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे दिलाएंगे और वो ट्रैक शामिल करवाएंगे, वो गाने शामिल करवाएंगे जो पहले कभी भी मेरे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों, तो मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत से गाने ऐसे होते हैं, बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद जो है ना, इंसान को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब आपने किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से पहली मुलाकात करनी है ना, तो वहाँ पर उस जगह पर जाएँ जहाँ पर आप कभी दोबारा ना जाएँ, और जब आप मिलें तो कोई ऐसा गाना ना सुने कि जिसको बाद में सुनने के बाद आपको फिर उस शख्स की याद आए। सो वेल, बहुत से गाने ऐसे होते हैं, बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान को अपना गुजरा हुआ पल याद आ जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि गुजरा हुआ पल जो है वो अच्छा ही याद है, ना कि बुरा वाला। तो मिलकर ओपन करेंगे इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें सबसे पहले तो निकलेगा एक खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक प्ले करेंगे हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अपनी फरमाइश को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन आपकी फरमाइशें भी रहेंगी मेरे साथ साथ।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाज, आप सुन रहे हैं असल राज की सोल। उसी के साथ साथ एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज किया था एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और मेरे ख्याल में हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल यही करता है कि मतलब ना सिर्फ BGM यूज़ किया जाए बल्कि उन ट्रैक्स को भी शामिल किया जाए जिनकी फरमाइशें होती हैं। अभी जो है ना, थोड़ी देर पहले मेरे पर्सनल नंबर पे एक फरमाइश आई थी, तो मैंने अभी तक वो भी शामिल नहीं किया। बट अभी जो है ना, वो मेरे पास एक खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है और मुझे ये मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हुए हंसी भी आ रही है, पता नहीं क्यों। और नॉटिंघम से हमें सुन रहे हैं उज़ैफा हैदर। सो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि मेरा नाम ले लीजिए, तो लीजिए आपका नाम मैंने ले लिया। बट मैंने यही बोला था कि अगर आप कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो मुझे लाजमी बता दें, लेकिन खैर शायद आप ट्रैक सुनते ही नहीं हैं या फिर आप सुनना चाहते नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर आप ट्रैक नहीं सुनना चाहते तो हम आपको ट्रैक सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। हमारे पास बड़ी खूबसूरत खूबसूरत प्लेलिस्ट है, बड़े मज़े ही है। मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हंगामे वाले ट्रैक शामिल करूँ, लेकिन फरमाइशें कुछ इस तरह से आ जाती हैं, सैड ट्रैक भी शामिल करने पड़ जाते हैं। वेल साथ ही में जिन नए लोगों ने आज अरबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाइएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं।
1: आज दिन रब मेरे दिन ये ना ढले वो जो मुझे ख्वाब।
0: लीजिए, बड़ी ही देर बाद दिल पर पत्थर रख के जो है ना उन्होंने फरमाइश कर ही दी है। सवल आपकी फरमाइश को ढूंढने में थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ और सर्चिंग करने में मुझे बड़ा टाइम लगता है। और वही बात आ गई ना कि मैं जब 2 घंटे का टाइम मेरा आपके साथ होता है, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है, तो अब बाकी टाइम में जो मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी ट्रैक सुनती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि इसको आपके अपने दरमियान शामिल करूँ, लेकिन एंड दी एंड मुझे आके वो चीज़ भूल जाती है। सो अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश है, उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

वैसे सियाने कहते हैं कि किसी नए इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का जिक्र नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पे उस इंसान के साथ जो आपको लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। बट ये वैसे ही मैंने एक बात बताई है। चलिए खैर बात को ख़त्म करते हैं। हम लोग प्रोग्राम में एक छोटी सी फरमाइश को शामिल करते हैं। उसैफा हैदर की फरमाइश थी, तो उनकी फरमाइश को पूरा करेंगे। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि आप दुखी हैं, मतलब मुझे था कि शक्ल से दुखी लगते हैं, लेकिन आपकी जो फरमाइश है ना, उसको देख के, उसको सुन के मुझे ऐसा फील हो गया कि आप वाकई में ही दुखी हैं। वाला ये यादों को ताज़ा करते हैं। मैंने आगे ये बात की थी कि जब आप किसी इंसान के साथ पहली दफ़ा मिलते हैं तो ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर आप दोबारा ना जा सकें, और जब मुलाकात करें तो उस टाइम पे जो है कोई गाना या कोई ट्रैक ना सुने, क्योंकि फिर आपको ये ना हो कि जब आप कभी दोबारा उस ट्रैक को प्ले करें तो आपको वो गुजरा हुआ पल याद आए। सो वाला ये सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रापता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
4: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। वे फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सरराज की। सो इसी के साथ साथ प्रोग्राम में टॉपिक शामिल करवाऊंगी, लेकिन अभी फरमाइश आ गई सर, फिर वही बात आ गई कि जब ध्यान दो साइडों पे होना तो फिर काम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। सो अभी के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा, फिर इस ट्रैक के उस पर आके आपसे डिस्कस स्टार्ट करेंगे। ट्यून करके रखिएगा मुझे नहीं फजा 97.1 एफएम को एंड ऐप को। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी फॉर द 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। वेल, एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था इसके, उस बारे ही आपसे मुलाकात। अभी जो है वो तकरीबन वक्त हुआ जाता है मेरे आपके दरमियान छोटा सा टॉपिक शामिल करने का। हमारी ये डेली रूटीन की लिसनर है और मुझे वही बात आ गई कि जब आप मेरी किसी भी बात पर अमल कर लेते हैं तो मेरा मकसद यही होता है कि आप मेरी बातों पर अमल करें। तो अगर आप में से किसी ने भी मेरी बात पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका है। वेल, बड़ी ही खूबसूरत सी बात है कि कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात कि कामयाबी मिलती भी उन्हीं को है जो सीखने से नहीं घबराते। न्यू स्किल्स जो है ना वो लर्न करनी चाहिए, आनी चाहिए आपको। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया हुआ है कि जो चीज़ सीखने को मिल रही है उसको सीखते जाओ। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा फिर आपके पीछे खुद आता है जब आप काम के पीछे भागते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया, सोचा हुआ है, कोई वो कहते हैं ना डरडे वाला मकसद है ना, तो आपने उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपने कोई अपना प्लान किया है ज़िंदगी के हवाले से आगे कैसे बढ़ना, अपनी मंजिल को कैसे हासिल करना है, तो हाँ उसको सिर्फ आप अपने तक महदूद रखें, ना कि बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के दूसरों तक उस चीज़ को पहुँचाएँ। अच्छा, हमारे में ये चीज़ बड़ी हो आम है कि जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो हम सबसे पहले ये चीज़ कर देते हैं कि हम सबको बता देते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है। सो वेल, फिर एंड द एंड होता ही है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि हाँ ये आप कर सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप ये नहीं कर पाएंगे। और जब इंसान किसी ऐसी बात को सुनता है ना, फिर उसका दिमाग पकड़ पकड़ नेगेटिव बातें लेकर आता ही आता है। सो ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे पहली बात। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी को बता देते हैं फिर आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ भी होने लग जाता है ना, तो फिर आप इस चीज़ को सोच के काम करते हैं कि फ़लाँ बंदे को मैंने फ़लाँ इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं ये चीज़ करूँगा तो फिर आप मुझे करनी ही पड़ेगी, फिर आप दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और एक सिरे से देखा जाए तो मतलब हर चीज़ के दो फायदे होते हैं। अगर एक सिरे से देखा जाए, दूसरे सिरे से देखा जाए, तो ये चीज़ निकलती है कि अगर आप किसी को नज़र में रख के हाँ यार अगले को मैंने बताया हुआ है फलां बंदे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो मुझे अब ये चीज़ हासिल करनी ही करनी है, तो फिर आपको उसको डेफिनेटली हासिल करना पड़ेगा और आप उसको हासिल कर भी लेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आकर यू टर्न ले लेते हैं और फिर उनको बाद में एहसास होता है कि नहीं यार शायद उस टाइम पे मैं स्टैंड ले लेता तो अभी जो है मैं उस मकसद तक पहुंचा होता जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना था, उस मंजिल तक पहुंचा होता जिसको जिसके बारे में मैंने सोचा था, जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखे थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में जो है ना वो समझाने वाले इंसान बहुत कम रहते हैं। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी सियाने बंदे से मशवरा लें, ना कि किसी ऐसे वैसे इंसान से जो आपको डीमोटिवेट करे। अगर कोई आपको किसी भी तरह की बात समझा रहा है, अच्छी बुरी बात समझा रहा है, तो आप उसको संभाल के रखें, उस शख्स को संभाल के रखें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना अच्छे लोगों से बहुत कम नवाजती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है तो इट्स वेरी ग्रेट, उसको संभाल के रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बताई गई बातें मेरे काम आती हैं, मेरी बताई गई बातें आपके काम आती हैं। इस तरह के मतलब आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं तो उस महफिल में बैठे हुए आपके दिमाग में अचानक से ये बात आ गई, जवाब देना है, तो वो फिर पूछा जाता है कि आपने ये बात सुनी कहाँ से। तो वो कहते हैं ना कि बेगानी महफिल में किसी इंसान का जिक्र करना जिसको वहाँ पर कोई जानता भी ना हो तो फिर बड़ी फ़ख्र की बात होती है। फिर जब आप उस महफिल में किसी ऐसे इंसान का जिक्र करते हैं जिसको कोई जानता भी ना हो तो फिर वो उस बंदे के बारे में पूछते हैं, उससे मिलने की चाह रखते हैं, वो कहते हैं कि हमें उससे मुलाकात करनी ही करनी है। सो ऐसे इंसान को किसी के कहने पर मत छोड़ें। हो सकता है कि अगर आप किसी के कहने पर उस इंसान को छोड़ भी रहे हैं ना, तो कल को वो इंसान अपने ताल्लुकात उसके साथ ठीक कर ले, बट हमारे ताल्लुकात ठीक ना हो सके। खैर, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी, लेकिन दरअसल मुझे बोलने में दिक्कत महसूस हो रही है, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद मौसम ऐसा चल रहा है उस वजह से तबीयत जो है वो अप डाउन हो रही है। सो अभी जो है वो एक ट्रैक का प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इसके उस पर आपसे आकर मुलाकात को नहीं, टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे।

सवाल आइए चलते हैं अगले ट्रैक की जानिब। साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास रहेगा। ट्यून करके रखिएगा रेडियो 97.1 FM को एंड डैप को। विल बी बैक आफ्टर द ट्रैक।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो फजा के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं असल और आज का। इट्स मीन के लंच बॉक्स सुन रहे हैं, लंच बॉक्स को ओपन करेंगे जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होंगी जो आपने हम तक पहुँचानी है। लेकिन गाने इतने छोटे छोटे पता नहीं कैसे निकल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। खैर छोटे छोटे नहीं है, हमारे पास और भी ट्रैक्स की फरमाइश है, हम उनको पूरा कर देते हैं। तब तक हम अपने दूसरे कामों को भी पूरा कर लेते हैं। बस मेरे पास जो है ना कल से एक फरमाइश पड़ी हुई है और मैंने अभी तक उसको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। और कल मैंने आई डोंट नो क्यों शामिल नहीं किया, या मुझे नज़र नहीं आई, अचानक मेरी अभी नज़र पड़ी है इस ट्रैक पर। अभी मेरा दिल था कि मैं अपनी पसंद का एक ट्रैक शामिल करूँ प्रोग्राम में, लेकिन अभी जो है ना इसको ट्रैक को शामिल कर देते हैं, हम फिर किसी और टाइम प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। खैर ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो उस्ताद की आवाज़ और मुझे इनका नाम बड़ी मुश्किल से याद होता है यार। हाँ, राहत फ़तेह अली ख़ान, इनकी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे दरअसल ना इनमें और वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान में जो है ना कोई ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आता इनके नाम में, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। वाला ये सुनते हैं इस ट्रैक इस पर रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 7.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: चलो अभी उसी के साथ साथ मेरे पास एक की फरमाइश मौजूद है, तो मैं उसको प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। सुनिएगा इस ट्रैक को, इस ट्रैक इस बारे की आपसे मुलाकात।
1: सफर में
0: साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2ET
2: पिशावरी डेरा।

0: academy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: Get ready to move.
5: It's all about the beat.
6: Wow,
7: only tune Super Hit Channel.
8: Fizz on 97.1 FM.

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: पतंजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

दुनिया की महफिलों से उकताए हुए लोगों को रेडियो फजा दे रहा है एक पुरसुकून भरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अपना आरजे हुज़ैफ़ा हैदर। बुध से जुम्मा 2 से 4

वेलकम बैक दोस्तों, जिंदगी खूबसूरत तोहफा है और हर नया दिन आपके लिए एक नया मौका लेकर आता है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो बस दिल खोल कर मुस्कुराइए और इस हसीन पल को जी लीजिए। आज के इस खूबसूरत शो में हम बात करेंगे खुश रहने के छोटे छोटे राजों पर, सुनेंगे आपके पसंदीदा नगमे और शामिल करेंगे आपकी प्यारी प्यारी बातें। तो बगैर किसी तखीर के शुरू करते हैं सुरों का ये सफर एक ऐसे गाने के साथ जो आपके मूड को बिल्कुल ताज़ा दम और दिल को खुश कर दे। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, जहां जिंदगी है वहां खुशी है। आप हमें अपने पैगामात और फरमाइशें भी भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं इस जबरदस्त ट्रैक की तरफ। पैगामात और फरमाइशें भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0115710971। मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ, और भेज दीजिए फजा 97.1 FM को। सुनिए गए खूबसूरत सॉन्ग, सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं फजा FM 97.1। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आज जैसा खुश रहने का तरीका क्या है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, खुशी किसी बड़ी कामयाबी के मुंतजर रहने का नाम नहीं, खुशी तो रास्ते का नाम है। सुबह की गर्म चाय की पहली चुस्की, किसी दोस्त की बेसाख्ता हंसी या किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद, खुशी इन छोटे छोटे लम्हात में छुपी होती है। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल भी गुजरे तो परेशान मत होइए, गिरना और संभलना ही तो जिंदगी का असल मजा है। आगे बढ़िए, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए और खुद पर यकीन रखिए। चलिए, अब वक्त है एक और पसंदीदा म्यूजिक का जो आपकी तवानाई को और भी बढ़ा देगा। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, सुनते रहिए

गाना आपको कैसा लगा मुझे व्हाट्सएप पे फौरन बताइए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और मैसेज में बेशुमार सामीन मौजूद हैं। अहमद साहब लिखते हैं आज मेरा दिन बहुत मसरूफ था लेकिन आपकी बातें सुनकर थकन दूर हो गई। शुक्रिया अहमद भाई, यही तो हमारा मकसद है कि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ला सकें। मरियम का मैसेज है, हमें भी कोई मुस्बत बात बताइए। मरियम बस इतनी सी बात याद रखिए, जो गुजर गया वो माजी था, जो आने वाला है वो उम्मीद है और जो अभी है वो आपकी ज़िंदगी है। इसलिए फ़िलहाल खुलकर मुस्कुराइए। लीजिए अब एक ऐसा ट्रैक जो आपकी शाम को और भी यादगार बना देगा। सुनते रहिए फजा 97।

कभी आपने सोचा कि हम हमेशा खुशियों का इंतजार क्यों करते हैं? जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। खुशी नहीं है तो कल किसी बड़ी कामयाबी के बाद वो खुशी सिर्फ कुछ दिन रहेगी, फिर गायब हो जाएगी। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी तो रास्ते में चलने के अंदाज का नाम है। मुझे मालूम है यहाँ कुछ लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो शायद इस वक्त अपने करियर के किसी मुश्किल मोड़ पर हैं, शायद किसी का कारोबार नहीं चला, शायद किसी की पढ़ाई के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, शायद कोई अपनी नौकरी से तंग है या अपने ख्वाबों को टूटता हुआ देख रहा है। अगर आप इनमें से एक हैं तो मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, गिरना कोई शिकस्त नहीं है कि गिर कर उठना कामयाबी है, और गिर कर ना उठना असल शिकस्त है। दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, खेल, साइंस, आर्ट्स या बिजनेस, वो एक ही रात में कामयाब नहीं हुआ। उन सब ने इतनी बार ना सुनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन सब ने इतनी बार शिकस्त का जायका चखा होता है कि अगर वो हमारी तरह हिम्मत हार देते तो आज दुनिया उनका नाम ना जानती। रात की तारीकी का मतलब ये नहीं होता कि सूरज खत्म हो गया, रात का मतलब सिर्फ ये होता है कि सूरज थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ गया और वो सुबह एक नए जज्बे के साथ, ज्यादा रोशनी के साथ वापस आने वाला है कि जिंदगी सुबह भी आएगी। और शर्त सिर्फ ये है कि आपने मैदान नहीं छोड़ना, आपने खुद पर से यकीन खत्म नहीं होने देना।

जनाब बातें तो बहुत सी हैं और इस सिलसिले में चलता रहेगा। मैं चाहूँगा आप जरा सुकून से बैठें, एक लंबी सांस लें, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट लाएं और सोचें कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। मैंने आपसे बहुत सी बातें की, उम्मीद की, खुशी की और ज़िंदगी के नेक जाविये से देखने की, और वक्त चला है इन तमाम बातों के साथ खूबसूरत और पुरजोश और दिल को छू लेने वाले नगमे में डाला जाए एक ऐसा गाना जो आपके मूड को बिल्कुल सेट कर दे, जो आपको अंदर से तवानाई और खुशी से भर देगा। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM, क्योंकि फ़ज़ा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है।

वेलकम बैक, वेलकम बैक सामीन। आप सुन रहे हैं फ़ज़ा एफ़एम 97, जहाँ ज़िंदगी है वहाँ खुशी है। कैसा लगा आपके नगवा? मुझे यकीन है इस धुन ने आपकी रगों में एक नई तवानाई दौड़ा दी होगी, आपकी थकन को झाड़ दिया होगा और आपके चेहरे पर एक ज़बरदस्त सी मुस्कुराहट ला दी होगी। अगर आप भी अभी गाड़ी में बैठे हैं एफ़एम ट्यून क्या या घर में काम करते हो रेडियो की आवाज़ बढ़ाई है, तो मैं आपको पता चलूं कि आप बिल्कुल सही वक्त पर सही फ्रीक्वेंसी पर आए हैं। यहाँ बात हो रही है ज़िंदगी को खुलकर जीने की, मायूसी के बातों को हटाने की और अपने अंदर उस जोश को जगाने की जो अक्सर रोज़मर्रा की भागदौड़ में धीमी पड़ जाता है। दोस्तों एक बात याद रखें, खुशी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बाजार से मिल जाए या कोई दूसरा इंसान आपको प्लेट में रखकर तोहफे में देगा। खुशी एक इंतखाब है, चॉइस है। आप सुबह उठकर ये फैसला करते हैं, आज चाहे हालात कैसे भी हों मैं अपना मूड ख़राब नहीं करूँगा, किसी तरफ जाने नहीं दूंगा। हमें से अक्सर लोगों की गलती ये होती है कि हम अपनी चाबियाँ दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई एक शख्स आकर ज़रा सी सख्त बात कह देता है और हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। कोई गाड़ी के आगे कट मार कर निकल जाता है और हम अगले 2 घंटे गुस्से में सुर्ख रहते हैं, क्यों? हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया। आज से अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा कर आगे निकल जाइए। इसकी तलखी उसका अपना मसला है, आपका नहीं। आपकी ज़िंदगी इतनी कीमती है कि उसे दूसरों के बुरे रवैयों पर साय न

हमें से अक्सर लोगों की गलती ये होती है कि हम अपनी चाबियां दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई एक शख्स आकर जरा सी सख्त बात कह देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। इस वक्त बहुत से नौजवान हमें सुन रहे होंगे, वो जो रातों को जाकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, ख्वाब बुनते हैं, वो जो दिन रात मेहनत करें अपने वालदैन का नाम रोशन कर सके, अपना एक मकाम बना सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने ख्वाबों पर कभी समझौता मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारे पास वसाइल नहीं, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ शोर है, और शोर का बेहतरीन जवाब आपकी खामोश मेहनत और आपकी कामयाबी है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोग हंसते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो लोग तनकीद करते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। इसलिए लोगों के रवैयों की परवाह छोड़ दीजिए और अपने काम पर तवज्जो दीजिए। आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है, बस शर्त यह है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी।

बातें करते करते एहसास ही नहीं होता कि वक्त इन तेज़ी से पर लगा कर उड़ा। लेकिन इस ब्रेक को ख़त्म करने से पहले एक और छोटी सी बात जो मैं आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं, माफ़ करना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए। हमारे सीनों में जो बुग़्ज़, कीना और पुरानी बातों के बोझ होते हैं वो किसी और का नहीं बल्कि हमारा अपना नुकसान करते हैं। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो दरअसल हम अपने आप को एक कैद से आज़ाद कर देते हैं। आज ही अगर किसी के साथ कोई अनबन है, कोई पुरानी नाराज़गी है, तो एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए, कैसे हो लिख कर भेज दीजिए, अना को बीच में से हटा दीजिए। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं कि उसे नफ़रतों और नाराज़गियों में गुजारा जाए। अपनों को गले लगाइए, खुशियाँ बांटिए और इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए। जनाब वक्त हुआ चाहता है एक और बेहतरीन ज़बरदस्त फास्ट ट्रैक का, जो आपकी सोच को एक नया मोड़ देगा और एक आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी खूबसूरत मुस्कुराहट लाएगा। अपने हाथों को साइड पर कीजिए, उस मौसीकी के फ्लो में बैठ जाइए, सुनते रहिए फजा 97.1 FM। जहां जिंदगी है वहां खुशी है। ये ट्रैक है मारूफ गुलकार, मारूफ मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को आप समाप्त कर रहे हैं। सुनते रहिए फसा 97.1 FM। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

ਵੀ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: So hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Hazar 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट और आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदे जी एन उस्ताद बिस्मिल्लाह बखैर राग ले आस्ता लवेसा आओगाना दिल तराशे। उम्मीद आवासी के जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होकर अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तकदों में मशगूल होगा। बदन चीज उस्मान खान प्रोग्राम ड्राइव जोन में वेलकम करते हैं आपको फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से। बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समातों का जिन्होंने फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज कर रखा है। उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा होगा, और अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं भी गुजरा तो इट्स ओके, आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए। जहां पर आपका आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा हो सकता है, वहां पर आपकी रात अच्छी गुजर जाए। रोड पे हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, गाड़ी में हैं, जहां भी हैं, जिस तरह भी हैं, कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम में साथ निभाने का, अपने होने का एहसास दिलाने का। तरीकाकार उन लोगों को बताएंगे जिन्होंने आज पहली बार फजा 97.1 एफएम को ट्यून या चूज कर रखा है। जल्दी से अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए, मैं नंबर बताता हूं, उस नंबर को आपने सेव करना है। खूबसूरत, आपने अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लिया है। अब यहां पर नंबर लिखिए 01157100971। I again repeat this number is very slowly 01157100971। इस नंबर को सेव कीजिएगा, व्हाट्सएप पर चाहिएगा कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा। हवा के दोष में लहराता गुनगुनाता सनसनाता हो आपका खूबसूरत सा पैगाम, जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, हजूर सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो वाई यू वेटिंग, जल्दी से मोबाइल फोन उठाकर मैसेज कीजिए मुझे और बताइए कि आप फला इब्ने फला फला जगह से मेरा साथ निभा रहे हैं, नॉटिंघम में हैं या इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी मौजूद हैं। बस आपकी खूबसूरत सी समातों से मेरी आवाज अगर टकरा रही है तो आप मेरी गाड़ी में बैठ चुके हैं, ड्राइव टाइम स्टार्ट होने पहुंचा है। कहीं दूर है जहां पर ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी मेरा साथ दे सकते हैं। गूगल पर जाकर लिखिएगा radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मेरा साथ दीजिएगा। इससे भी आसान तरीका चाहते हैं तो एप्लीकेशन मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगहों पर अवेलेबल है। बस इंस्टॉल कर ली तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू बल्कि इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह मुझे बआसानी सुन सकते हैं। न सिर्फ मुझे सुन सकते हैं बल्कि रेडियो फजा के तमाम तरार्जेस को 24 आवर्स किसी भी टाइम पे सुन सकते हैं। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप फजा डैप पर मुझे ट्यूब कर सकते हैं। जी हाँ, फजा डैप पर भी मैं आपको जरूर मिलूंगा, बल्कि मजीद क्रिस्टल क्लियर वॉइस के साथ मिलूंगा। ये हो गया तमाम थर वो बातें जो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी, कर दी हैं। अब आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बड़ी खूबसूरत सी आवाज के साथ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन आवाजों को जमा करके आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आने वाली है इस आवाज के। उस पर होगी आपसे मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 एफएम एंड डैब एंड आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड Drive Zone।

0: जना वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लौट के वापस से सुमित के साथ के आप लोग मेरे साथ साथ हैं। बड़ी खूबसूरत सी आवाज आप लोगों की समातों से टकराई और ये आवाज जो थी उम्मीद है कि आपकी समातों से होते हुए आपके दिल के अथाह गहराइयों में समो चुकी होगी। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो मैं क्या करा, आपको उस डेट में कुछ नहीं कर सकता सिवाय इस चीज़ के कि आपको इस बात की यकीन दहानी करवाई जा सकती है कि नेक्स्ट जो गाना होगा वो आपकी मर्जी का हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी मर्जी का शामिल होना ज़रूरी है। और मर्जी का शामिल होने के लिए आपका फिजिकली ना सही लेकिन टेक्निकली शामिल होना ज़रूरी है। और टेक्निकली शामिल होने के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारा साथ देना है, या चाहे आप कॉल पर हमारा साथ दें या फिर आप मैसेज पर हमारा साथ दें, मर्जी आपकी चलेगी और हाथ हमारे चलेंगे। उसके लिए करना आपने सिर्फ इतना सा है कि जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर को सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर आपने अपना कोई भी पसंदीदा कलाम मुझ तक पहुंचा देना है। ना पहुंचा सके तो कम से कम अपना नाम तो मुझ तक पहुंचा ही सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आप फलां इब्ने फलां फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं। तरीकाकार वही है पुराना व्हाट्सएप का जो सबको पता है, बच्चे आप रहे नहीं, जवान भी आप नहीं रहे, बुढ़ापा भी आप तक आया नहीं है, तो ये जो बीच का सफ़र है इसको हम नौजवानी की अलामत कह सकते हैं। एक होता है जवान, एक होता है नौजवान। अब नौजवान जो होता है ये जवान से पहले वाला हिस्सा होता है और मैं तो हूँ अब आपका, मुझे पता नहीं मेरे साथ बैठी हुई शख्सियत जो है वो 18 जवान है नौजवान भी नहीं है। जी हाँ, इनको हम 18 जवान कह सकते हैं, यानी कि हमारे साथ जो मौजूद हैं इनको हम प्यार से कहते हैं काशिफ और गुस्से से कहते हैं कैश, कभी कभार ऐश भी कह लेते हैं। क्या कहते हैं आपको?
1: मुझे आरजे काशिफ कहते हैं।
0: दैट्स वेरी गुड, नेड़ी गल मुकाई जे। खैर जी, हमारे साथ आरजे काशिफ भी मौजूद हैं और थोड़ी सी देर से ताखीर हुई माँ सदके जाए, मेरी उर्दू दिन ब दिन
1: डबल लेट हो गए
0: आपकी तरह ना, मेरी दिन ब दिन उर्दू जो है वो अच्छी होती जा रही है।
1: जी बिल्कुल ऐसी है, जैसा माहौल होता है फिर वो वैसे रंग चढ़ जाता है।
0: जी बिल्कुल जी, माहौल का असर तो होता है लेकिन इतनी जल्दी होता है ये मुझे नहीं मालूम था। काशिफ कैसे रहे आपके छुट्टियों के दिन?
1: छुट्टियों के दिन माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे हैं और बहुत फन किया है, इन्जॉय किया है और थोड़े से काम भी थे उनको भी निपटा है, तो फ्री होके जो है ना अभी रीज्वाइन की है।
0: मतलब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो चुका है?
1: नहीं, जिंदगी का मकसद तो मुकम्मल नहीं हो चुका लेकिन जो है को डेली बेसिस पे जो काम करने पड़ते हैं वो करके तो फिर जो
0: मतलब आप रिबोटिक लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकले हैं।
1: जी बिल्कुल, निकलना भी चाहिए। एक वो हमारी जो कंट्रीज है उधर ना एक मौत का खूह होता है, तो उसमें बाइक चलती रहती है और जितनी तेज करते हैं बंदा और उस लूप में फंसता जाता है। ये हमारे जो एशियंस लोग हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, ये बेटर समझते हैं इस चीज़।
0: ऑफकोर्स, लेकिन खैर जी ये तो हमारे यहाँ पर भी सर्कस जब लगती हैं तो उसमें ये चीज़ें भी दिखाई जाती हैं और होती भी हैं। और हकीकतन अगर हम देखें तो हमारी जो आजकल की जिंदगियाँ हैं ना, हमारी ये जो आजकल की लाइफ है ना, जिंदगी जो है, ये वाकईतन उस मौत के कुएं में घूमने वाली मोटरसाइकिल की तरह, और गाड़ी भी इवन देन मैंने देखी हुई है तो उसकी तरह बन चुकी है हमारी लाइफ। बस चल सो चल चक्कर ही लगाते जा रहे हैं और इन द एंड फिर हो ही उन्हें।
1: हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, वो जितना हम तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं उतना हम उसमें और ऊपर आते हैं, हमारा प्राइजल होता है, लेकिन एग्जिट करने का जो सम टाइम हमें प्लान नहीं मिलता कि एग्जिट कैसे करना।
0: सो आपने अब तक जो अपनी जिंदगी गुजारी है आपको लगता है कि इसमें आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं?
1: जी मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो है ना थोड़ा बहुत बैलेंस करना आ गया, हालांकि बैलेंस होता नहीं है, हमें एक्सट्रीम एंड पे जाना पड़ता है। एक तरफ हमारी कामयाबी होती है, एक तरफ हमारी जो डिजायर्ड लाइफ होती है, दोनों में से एक चूज करनी पड़ती है। तो बहुत कम लोग हैं जो इसको अचीव कर पाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं हफ्ते में एक आध जो है ना वो थोड़ा सा बंक मार के तो अपनी जो लाइफ है वो जीने की मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
0: कामों से बंक मारते हैं, जिंदगी से बंक मारते हैं?
1: नहीं, उनको मैनेज करके तो एक दिन जो है ना एक वीक का वो अपने लिए जरूर निकालना चाहिए।
0: हालांकि यार कितने खुश नसीब हैं आप कि आप अपनी जिंदगी मसरूफ तरीन जिंदगी में से एक दिन जो है वो पूरे का पूरा एक दिन वो अपने लिए निकाल लेते हैं। शादीशुदा तो नहीं है?
1: जी शादीशुदा हैं लेकिन उनको साथ ले जाते हैं।
0: यार फिर तो और ज्यादा आप लकी हैं, शादीशुदा होने के बाद भी आप जो हैं वो बड़ी बात है कि आप शादी के बाद भी अपनी मिसेस को साथ ले जाते हैं,
1: क्योंकि वापस आके एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि साथ ही ले जाएं।
0: साथ ही ले जाएं,
1: आई विटनेस हो जाएं वो भी।
0: दैट्स वेरी गुड। खैर जी, आप जितने लिसनर्स हमें इस वक्त सुन रहे हैं आप लोग प्रोग्राम में शामिल होकर हमें बता सकते हैं कि आप आया अपना जो ये कीमती वक्त होता है जो सिर्फ आपकी जात की हद तक के लिए होना चाहिए कि इसमें आप अपने लाइफ पार्टनर को शामिल करते हैं या नहीं करते। लाइफ पार्टनर का मतलब तो यही होता है ना कि हर चीज में उसकी पार्टनरशिप
1: जी, हर चीज में बिल्कुल ऐसी है।
0: तो वो पैसों में भी होनी चाहिए?
1: नहीं, पैसों में आकर थोड़े से बंदे कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे शॉपिंग में ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है, एट द एंड ऑफ मंथ जो है ना मुश्किल हो जाता है।
0: चले जी, मर्द हजरात जो हैं वो यही सोचकर उनकी शॉपिंग करवा देते हैं कि इन्हीं के लिए तो सब कुछ करता हूँ। और यह हकीकत है कि आप शादी से पहले अपने लिए तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब आप एक मैरिड लाइफ में आ जाते हैं उसके बाद आपकी फर्स्ट प्योरिटी जो होती है वो आपके पार्टनर ही होता है, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो ऑफकोर्स फिर वो आगे आ जाते हैं। खैर, हम गपशप इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। आज का प्रोग्राम काफ़ी मोटिवेशन वाला होने वाला है, लेकिन प्रोग्राम में आपके लिए हमारे पास जो सॉन्ग्स हैं उनको भी साथ साथ शामिल करने हैं। बी प्राक की आवाज़ बड़ी देर से हमसे फरमाइश की जा रही थी और अब तक उसको टालता आ रहा था, क्योंकि मैंने इनका कोई भी सुखी गाना अभी तक नहीं काशिफ सुना।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत सैडिस्टिक सोल है।
0: ओए होए होए होए, भाईजान का मेरा ख्याल है कि इनके सर पे जो बाल नहीं है असल दुख इनकी जिंदगी में ये है।
1: दुखों ने उड़ा दी है,
0: उड़ा दी। सली जी भी प्राकी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ड्राइव कर रहे हैं तो बी से बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। इस आवाज़ के उस पार एक छोटी सी प्यारी सी चुन्नू मुन्नू सी कमर्शियल ब्रेक होगी, उस कमर्शियल ब्रेक के उस पार जब लोड कराएंगे फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रेडियो 97.01 FM एंड ऑल्सो डैब, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम, और बंदे ने चीज़ उस्मान खान विद
1: एंड आरजी काशिफ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM।

0: All right, once again, welcome back. सीटियां बजाते हुए मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान विद
1: आरजे काशिफ।
0: अच्छा काशिफ को ना अपने नाम के साथ आरजे लगाने का बहुत शौक है, ऐसा क्यों काशिफ?
1: नया नया ना।
0: अच्छा नया नया, ये भी ठीक है,
1: न्यू हैबिट इनकल्केट कर रहे हैं।
0: वेरी गुड हो गया। तो कैसा लगता है जब आपके अलावा कोई आपको आरजे काशिफ कह के बुलाता है? तो
1: बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सारी मेहनत के बाद इधर तक पहुंचे हैं।
0: कभी इत्तेफाक हुआ आपके घर वालों ने कभी आपको आरजे साहब कह के बुलाया?
1: नहीं अभी तक नहीं मिला है।
0: अच्छा मेरे ये हुआ था कि जब जिस दौर में मैंने रेडियो ज्वाइन किया ना उस दौर में पहले तो खैर मुझे कोई इतना नहीं जानता था, उसके बाद जब लोग मुझे जानना शुरू हुए तो फिर मेरा नाम ही आरजे पड़ गया। कोई मेरे नाम से मुझे मुखातिब नहीं करता था, इवन तो मेरे घर वाले भी मुझे आरजे साहब ही कह के बुलाना शुरू हो गए थे। तो ये कभी कभी तो अच्छा लगता था लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था।
1: मुझे मेरा बचपन में ये कंसेप्ट था कि आरजे जो राजा फैमिली होती है वो अगर कोई सुन रहा है तो वो ये वो लोग होते हैं।
0: एशियंस
1: अभी आगे जो है ना कंसेप्ट क्लियर हुआ है।
0: ये एशियंस में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वो शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खैर जी यहाँ पर भी यही साहब है। कितने ही नाम ऐसे हैं जिनके निकनेम के तौर पे इस्तेमाल होता है, ओरिजिनल नाम किसी को भी नहीं पता होता। हमारे अपने ऑफिस में कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम निकनेम से जानते हैं, ओरिजिनल नाम हमें नहीं पता, वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके पता चलता है कि अच्छा इसका ये पूरा नाम है। वेल जी आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे जिन लोगों ने अभी अभी फिजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज किया है। बंदा जिसको उस्मान खान विद काशिफ
1: आरजे
0: काशिफ जी मास्टर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आरजे काशिफ हमारे साथ हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव टाइम और रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से है और मेरा और आपका साथ, बल्कि हमारा और आपका साथ जो है वो ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे का भी बाकी है। तो इस साथ को मजीद खूबसूरत आप लोग बना सकते हैं। अगर आप अभी अभी आए हैं तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है, जो नंबर काशिफ आपको बताएंगे उस नंबर को आपने सेव करना है, व्हाट्सएप पर जाना है और फिर अपने दिल की बात लिखकर भेज।
1: अभी आप व्हाट्सएप पे लाइव जो कॉल है वो कर सकते हैं, उसके लिए जो नंबर है वो आप नोट करते चलिए 0115710971। इसको आप जो है सेव करेंगे, सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे आप आ जाएंगे, इधर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना प्यारा सा पैगाम भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे साथ कनेक्ट करने का तरीका है वो ये है कि www.radiofaza.co.uk और इसके बाद एक हमारी एप्लीकेशन है उसको आप जो है ना अपने प्ले स्टोर और आईट्यून से भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम से।
0: जी हाँ जनाब, इसके अलावा अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप हमें फजा डैप पर भी ट्यून कर सकते हैं। ये वो तमाम तर रास्ते हैं जिन रास्तों के थ्रू चलकर आपने हम तक आना है और काशिफ को बता, बल्कि आरजे काशिफ को बताना है।
1: जी बिल्कुल, तो जो अभी आप किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई पैगाम डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आप बात कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे, तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, तो हम आपका पैगाम जो है उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
0: जी हाँ जनाब, अगर आपके किसी प्यारे से दोस्त की आज सालगिरह है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो फिर हम उनके लिए गाना लगाएंगे तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हाँ अगर उनकी आज हैप्पी वाली बर्थडे है तो हम उनसे कहेंगे हैप्पी वाला बर्थडे टू यू, और बल्कि हैप्पी पार्टी वाला बर्थडे टू यू, ताकि वो पार्टी के कुछ अरेंजमेंट्स हो सकें। काशिफ आपकी बर्थडे तो नहीं आती होगी साल में एक दफ़ा भी?
1: मेरी 5 साल में एक बार आती है।
0: 5 साल में मुझे पहले ही शक था, ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी से पार्टी वार्टी की बात करनी हो पहले ही वो बंदा कह देता है?
1: जी बिल्कुल ऐसे, पार्टी एक तो अरेंज करना मुश्किल हो गया, टाइम निकालना, और दूसरा जो है ना सब लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है।
0: ये सच है, आज के दौर में ये तमाम तर सहूलतें तो हैं लेकिन जो एक चीज़ नहीं होती वो वक्त है। हमारे पास वक्त नहीं होता इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए काशिफ, आपको साल में एक आध दफ़ा मना लेनी चाहिए।
1: जी एक दो बार तो होनी चाहिए,
0: आज ही मना लेनी चाहिए।
1: नहीं आज तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, अभी जो प्रोग्राम का 1.5 घंटा बाकी है।
0: हाँ भाई जी, ये खूबसूरत सी आवाज़ आप तभी सभी लोगों तक जो पहुंच रही है, इसको अरिजीत सिंह की आवाज़ कहते हैं, इसके अलावा मिशाल भी हैं और जुबिन नोटिया की आवाज़ भी है, ये 3-4 आवाज़ें मिक्स करके आपके लिए शामिल कर रहे हैं। इन आवाज़ों की उस बार होगी आपसे मुलाकात, रहेगा हमारे साथ साथ बेहद चुकी आप तमाम तर समाप्त होगा फजा 97.1 एफएम एंड टैप को ट्यून करने का और इन खूबसूरत लम्हात में हमारा साथ निभाने का।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम कमर्शियल ब्रेक से लौट कर वापस आ गया, और आपने कमर्शियल ब्रेक सुनी होगी तो काफ़ी कुछ आपको नया जानने का मौका मिला होगा। तो अभी आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो है वो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप नोट करते चलें, 01157100971। इस नंबर को आप सेव करेंगे और व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। व्हाट्सएप पे आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं, और अपना प्यारा सा पैगाम जो आप शेयर करना चाहें वो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और दूसरा

और दूसरा जो सेकंड वे है हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए radiofaza.co.uk, तो ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है, आप इधर जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो वे है रेडियो फ़िज़ा को ज्वाइन करने के लिए, रेडियो आप जाएंगे प्ले स्टोर में, जो एंड्रॉयड फ़ोन है रेडियो फ़िज़ा 97.1 FM के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे और आप हमारी जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है हमारे आरजेस की, हमारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, किसका किस वक्त कौन सा प्रोग्राम होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उधर मिलेगी। और जो एप्पल यूज़र्स हैं

अभी जो एप्पल यूज़र्स हैं वो एप्पल स्टोर में जाएंगे और रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM उसको राइड ऑन करेंगे तो उसकी एप्लीकेशन आप पॉप अप होगी, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस रेडियो चैनल्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। और चौथा तरीका ये है कि रेडियो डैब फ़ज़ा 97.1 के नाम से जो आप सर्च करेंगे अपनी गाड़ियों में तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो उधर से भी जाके आप हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन है इसको सुन सकते हैं।

अभी आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग जो है वो उसको ऐड करते चलने हैं। ये 90s के जो लोग हैं उनके लिए जो एक फरमाइश आई है, तो उस गाने को प्ले करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे।

वेलकम बैक। अभी हम 90s का मैचअप सुन रहे थे, तो अभी हम वापस आ चुके हैं। अभी आप रेडियो फ़िज़ा पे अपने मैसेजेस अपने कॉल के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसका एक नंबर है, वो आप नोट करते चलिए, 0115 7100971। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव करेंगे, इसके थ्रू आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना जो मैसेज है वो भी राइट डाउन कर सकते हैं, उसको हम शामिल भी करेंगे। और अगर आप किसी को कोई चीज़ डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई गाना, कोई कोड, कोई अपना पैगाम, तो वो हम आपका आपकी हेल्प करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे जिनके साथ अभी आप किसी हेजिटेशन की वजह से या किसी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, तो हम अवेलेबल हैं।

जैसा कि हमारा प्रोग्राम है ड्राइव जोन, और ड्राइविंग के वक्त पे हमारा जो है वो प्रोग्राम आता है, तो इसके रिलेटेड हम एक छोटी सी जो है ना गाड़ियों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ जो है ना छोटे मोटे जो रिपेयर हैं उनकी भी हमें नो हाउ होनी चाहिए। तो अभी इरा चल रही है मॉडर्न इरा में, हमें वही लोग ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे जिनको जानते हैं समथिंग अबाउट एवरीथिंग। अभी वो टाइम चल रहा है, तो हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो मैं अभी आपके साथ एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा कि एक दिन मैं यूएई में था, तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो गर्मी थी तो मैं रेस्ट कर रहा था, तो एक जो है ना इजिप्शियन मेरे पास आए, तो वो उनकी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो चुका था, तो उनको ये नहीं पता था कि इसको मतलब स्टेपनी टायर को चेंज कैसे करना है, तो वो बड़ी मुश्किल में थे। मेरे साथ उन्होंने अप्रोच किया, वो सलाम दुआ हुई, तो वो कहते हैं कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो आए मेरी आग को ना आके गाड़ी चेक करें। तो जब मैंने गाड़ी देखी तो वो पंक्चर के साथ साथ उसको चलाते रहे, तो चलाते चलाते जो रिम है उसने टायर को काट दिया था, तो वो टायर डैमेज हो चुका था। तो जब इसी तरह उसको चलाते रहे तो वो मेन जो उसके बोल्ट होते हैं तो वो भी दो टूट गए थे। तो फिर मैंने उनको गाइड किया कि आप इसको एक तो साइड पर करें, तो एक सेफ प्लेस पे इसको पार्क करें, तो फिर जो है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं अपनी गाड़ी में गया तो मेरी गाड़ी में भी वो रिपेयरिंग टूल नहीं थे कि जिससे हम टायर चेंज कर सकें, तो देन एक प्रॉब्लम बन गई। तो एक इंडियन थे, उनकी नई गाड़ी थी, तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा यार मसला ये है कि इनका एक इशू है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो टूल नहीं है, तो आपकी गाड़ी नहीं है, अगर आप हमारी हेल्प करें तो मैं जो इनका प्रॉब्लम है वो साथ मिल के सॉल्व कर देते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने फिर हमें टूल जो है वो प्रोवाइड किए, फिर मैंने वो जैक वगैरह लगा के वो टायर चेंज करके दिया। तो उतने में वो उधर की पुलिस आ गई, तो वो भी बड़े हेल्पिंग थे, तो उन्होंने पूछा कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो हम अवेलेबल हैं। तो मैंने बोला कि अभी हमारे पास जो रेलिवेंट चीज़ें मेरे रिक्वायर्ड थी वो मुझे मिल गई हैं, तो मैं इनको टायर चेंज करके दे रहा हूँ। तो टायर चेंज करके दे के मैंने उनको फिर प्रॉपर गाइड किया कि अभी आप इस गाड़ी को आपने मेन रोड पर नहीं चलाना, आप अप्रोच करें जो नियरेस्ट आपकी वर्कशॉप आती है, तो उधर जाके इसका प्रॉपर जो है ना वो इसकी फिक्सिंग करवाएं, तो फिर आपने इस गाड़ी को मेन रोड पे लेके आना है। तो ये बात बताने का ये मकसद है कि जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और नए फीचर्स आ गए हैं गाड़ियों में, तो थोड़ी बहुत हमें टाइम निकाल के तो इनको भी समझना चाहिए, ताकि जब कभी कोई रोड पे इशू बने तो अपनी जो ड्राइव उसको स्मूथ करते करते साथ साथ जो है ना हम लोगों की भी हेल्प कर सकें। तो ये हेल्प तभी हो सकती है जब हमें कुछ ना कुछ इन गाड़ियों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अभी हमारे पास एक मैसेज जो हमें रिसीव हुआ है, तो वो आतिफ बात कर रहे हैं बर्मिंघम से, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आपको प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है और हम डेली आपके लिसनर्स हैं, तो आप एक फरमाइश है हमारी, अगर इसको आप ऑन ईयर करें तो इट विल बी वेरी प्लीजिंग टू अस। तो अभी उनकी जो ख्वाहिश है, उन्होंने एक सॉन्ग आया वो किसी को डेडिकेट करने के लिए हमारे साथ रिक्वेस्ट किया, तो वो गाना है रईस मूवी का, तो अभी हम उसको ऐड करते चलते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग भी किसी को कोई पैगाम या कोई सॉन्ग कोई ऐसी चीज़ डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम फुली अवेलेबल हैं, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं।

ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम प्यारे से सॉन्ग को ऐड करने के बाद अभी वापस आ चुके हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आरजे काशिफ। और अभी हमने जिस मूवी का सॉन्ग ऐड किया था अपनी प्लेलिस्ट में, तो वो था रईस फिल्म का लैला में लैला। तो इसी तरह अगर आप भी कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हम फुली अवेलेबल हैं। तो आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, तो ये एक लाइव कॉल का नंबर है, आप इसको ऐड करते चलें 0115710971। इसको आप सेव करेंगे, व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अपना कोई पैगाम है तो वो भी आप हमें इसी नंबर से ही फॉरवर्ड कर सकते हैं।

ज़िंदगी भी हमारी ट्रैफिक की तरह होती है, कहीं पे जब कभी हमें जल्दी जाना होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि जल्दी जल्दी अचीव कर लें इसको, और जो है ना जो मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ट्रैफिक जैम आ जाता है, कोई मुश्किलात आ जाती हैं इसी तरह इसकी रिजेंबलेंस में, तो सम टाइम हमें लगता है कि हमारा जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं पे आप नहीं होते तो आपके लिए बेनिफिट होता है। तो इसी तरह हमें जो है ना लाइफ में सारी जो मुश्किलात आती हैं और कोई भी मतलब एक मुश्किल वक्त आता है तो उसको सब्र के साथ ले कर चलना चाहिए।

अभी बहुत सारे लोग अपने काम से वापस आ रहे होंगे, तो दिन भर की थकावट और टेंशन और जो काम पे वो जो भी एक एनवायरनमेंट होता है, तो उसके निकल के एक ड्राइव में एन्जॉयमेंट के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसी तरह हम एक और अच्छा सा सॉन्ग जो है वो अपने लिसनर्स के लिए ऐड करते चलेंगे।

वंस अगेन वेलकम बैक इन फजा 97.1 एफएम। और अभी हम लौट के आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग के बाद। एक कमर्शियल ब्रेक थी, अभी हमारा और आपका साथ मज़ीद आधा घंटा रहेगा इस प्रोग्राम में।

जैसे वो कहते हैं कि ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी भी चाहिए। और हमारी ज़िंदगियों में ऐसा एक चल भी रहा है सिस्टम कि हम काम करी जा रहे हैं, बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात हैं जिनको हम रोज़ सोचते तो हैं, लेकिन कभी हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि कभी हम टाइम निकाल के अपने बारे में उन जो हमें जो काम करके खुशी मिलती है तो उनके लिए टाइम निकालें। हमें अभी जो हमारी सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि जो नंबर्स हैं और पैसों की जो दौड़ है, मतलब इसको लेके हम तकरीबन पूरी दुनिया में भी यही सिस्टम चल रहा है कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज़ में। और अभी जो है थोड़ा सा शो ऑफ का भी दौर है, तो जब से सोशल मीडिया आया तब से लोग जो है ना वो आपके रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसकी रील वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं। तो फिर हमें भी उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप को लेके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन सोसाइटी में एक जो माहौल बन चुका है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो कहीं आप भी इस लूप में फंस चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और उन कामों को के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें जो आप करना चाहते हैं। कोई ऐसा आर्ट है, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है जो करके आपको खुशी मिलती है अपार्ट फ्रॉम द जॉब और बिजनेस जो भी आप करते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए। मैंने भी अपनी लाइफ में टाइम निकाला है। मुझे जो है ना, मैं लोगों को लगता है कि मैं बातें काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो फिर मैंने देखा कि बातों का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो कहाँ पे हो सकता है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट भी करते थे कि आपको जो है ना वो रेडियो आरजे होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मैंने टाइम निकालता हूँ, बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना, लेकिन टाइम निकाल के मैं ट्रेनिंग ली है। तो अभी न्यूली मैंने ज्वाइन किया रेडियो को, लाइव आना शुरू किया, तो बहुत सारी मिस्टेक्स और गलतियां भी आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिगनिंग जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला कदम उठाने के लिए जो हिम्मत, जो चीज़ें चाहिए तो वो आपको असेंबल करनी पड़ती हैं। वो जब आप इकट्ठी कर लेते हैं तो एक आप स्टेप लेते हैं, तो फिर उस स्टेप लेने के बाद उसके लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं आपको आपके मेंटोर भी मिलते हैं, हेल्प करने वाले लोग भी मिलते हैं और डिस्करेज करने वाले लोग भी मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने जब एक डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेते हैं तो उसके लिए आपको जी तोड़ जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं जो है अभी रेडियो को जब से मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक खुशी का एहसास महसूस होता है और मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ और जो मेरी पर्सनैलिटी है तो मुझे अपने 24 घंटों में से दो घंटे ऐसे मिलते हैं कि मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल करता है। तो आप भी वो करने की कोशिश करें, टाइम निकालें जो आपका दिल करता है। अभी जो हमारे पास एक जो है वो मैसेज रिसीव हुआ है, तो एक सॉन्ग डेडिकेशन है।

हमने अभी उसको ऐड करते हुए चलेंगे। और अगर आप भी इसको जो है अपना इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको तो नंबर का पता ही है। तो जो लोग नए ज्वाइन जिन लोगों ने किया उनके लिए ये नंबर ऐड करते चलते हैं लाइव कॉल के 0115-71-00971 ये हमारा नंबर है। इस पर इसको आप सेव करेंगे और व्हाट्सएप पे आप आ जाएंगे। इधर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना पैगाम कोई डेडिकेशन कोई चीज़ है तो वो भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं तो हम उसको ज़रूर जो है अपने प्रोग्राम में ऐड करते चलेंगे। अभी एक खूबसूरत सी आवाज़ है तो उसको हम शामिल करेंगे।

वंस अगेन वेलकम बैक फजा 97.1 FM एंड डैब। तो हम बात कर रहे थे कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं उन चीज़ों के लिए जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने तो कोशिश की है और मुझे खुशी जो है वो मिलना शुरू हो गई है, और मैं अपने जो है दोस्तों के लिए भी टाइम निकालता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में हमें जो है ना एक लाइफ का जो है ना ज़िंदा होने का एहसास महसूस होता है। तो इस तरह आप लोगों को भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और जब आप टाइम निकालेंगे वो काम करेंगे जो काम करके आपको खुशी मिलती है, तो आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
7: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
3: ये है असली म्यूजिक का मजा, सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
8: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
9: रेडियो फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें.
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention,
9: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005. By providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
11: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
10: सलासा ट्यूशन सेंटर?
11: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
11: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ.
12: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए. सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
13: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.
3: इट्स कमर्शियल टाइम.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham. Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
8: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
14: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स
1: म्यूजिक। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music.
5: Well, your love is worse than cigarettes, even if I had 20.
6: You are listening 97.1 FM.

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: Ready to move.
8: It's all about the beat.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

हो तूने न जाना मैं हूँ दीवाना, दिल में छुपी है मोहब्बत तेरी।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2.
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

बनाते हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.